0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचार

के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जलवायु परिवर्तन आखिर है की। जलवायु परिवर्तन दा अर्थ है धरती दे तापमान मीह हवावां ते मौसमी प्रणाली विच लंबे समय लई आउण वाली तब्दीली। कुछ तब्दीलियां कुदरती हुंदियां ने पर पिछले 150 सालां विच मनुखी गतिविधियां कारण ए बदलाव बहुत तेज हो गया है, जिस दे कारण ने कोला पेट्रोल ते डीजल वर्गे ईंधना दी वरतों, फैक्ट्रियां ते वाहनां चों निकलण वालियां ग्रीन हाउस गैसां, जंगलां दी कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण, बेलोड़ी बिजली दी खपत, उद्योगीकरण ते तेज शहरीकरण, ए सब कार्बन डाइऑक्साइड ते मिथेन वर्गियां गैसां वधाउंदियां ने जो धरती दी गर्मी नूं बाहर नहीं जान दिंदियां।

जी स्रोते हो श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज दा अगला अंक जेड़ा की तुसी सुन सकोगे मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।

वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ताफे सुनना ना भूलना, मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज प्रोग्राम हर अकाल उस्तद देते हैं।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

0: बैंककार वही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी, इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने

0: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।
2: सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे।
1: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
3: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए वो उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोक सत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में

आज तो शुरू होएगा। भाजपा कांग्रेस अते अकाली दल समेत विरोधी धिर वल्लों बेअदबी विरोधी कानून विच सोधां वधदे करजे दे बोझ विगड़दी कानून व्यवस्था अते फरीदकोट विच फार्मेसी अफसर दे पेपर लीक होण दे मुद्दे उठाए जाण दी संभावना है। सत्ताधारी आप दे एजेंडे ते इस दीआं प्राप्तियां होणगीआं। सरकार वल्लों पंजाब गैर सहायता प्राप्त विद्यक संस्थावां दीआं फीसां दी नेमबद्दी बारे सोध बिल 2026 भी पेश कीते जाण दी उम्मीद है। अगले साल होण वालीआं विधानसभा चोणां तों पहलां इह इजलास मौजूदा विधानसभा दा आखरी इजलास होण दी संभावना है। पंजाब ने वोटर सूचियां दी चल रही विशेष गहन सोध SIR 2026 तहत सारे 117 विधानसभा हलकियां विच घर घर जाके गणना पड़ा दौरान गणना फार्मा

0: 2026 तहत सारे 117 विधानसभा हल्कियां विच घर घर जाके गणना पड़ा दौरान गणना फार्मा दा 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया है। मुख्य चोण अधिकारी आनंदिता मित्रा ने कहा है कि ए विशाल कार्य 3 अगस्त दी आखिरी तरीक तो एक दिन पहला पूरा कर लिया गया है। उन्होंने जिला चोण अधिकारियां ब्लॉक पद्धर के अधिकारियां अते इना सारे विधानसभा हल्कियां दी समुची चोण मशीनरी के यत्ना की शलाघा की थी ते क्या कि उन्होंने समर्पण नु दर्शाता है। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिनों के दौरे ते अज उड़ीसा पहुंचे। उत्थे ठहरन दौरान वह कटक विच जगत गुरु कृपालू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे अते भुवनेश्वर कटक ते गंजम जिलों विच कई सरकारी विद्यक ते सभ्याचारक प्रोग्रामों विच हिस्सा लेंगे। बल्कि राष्ट्रपति भुवनेश्वर तो बैरामपुर ले एक विशेष रेलगड्डी राही यात्रा करेंगे ते बाद विच गंजम जिले के तप्त पानी लई सड़क राही जाएंगे जिथे उन्हां दा मां कंतुनी देवी मंदिर अते शिव मंदिर विच प्रार्थना करन दा प्रोग्राम है। वो गोलाबंदा विखे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज विच रात लई रुकणगे। भुवनेश्वर अते कटक विच पुलिस दियां करीब 40 पलटना तैनात करके सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध किए गए ने। राष्ट्रपति दे दौरे दौरान सुरक्षा नु यकीनी बनाउण लई बैरामपुर रेलवे स्टेशन, राष्ट्रपति दे यात्रा रूट, तप्तपानी मंदिर कॉम्पलैक्स, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज अते होर निर्धारित स्थानां ते नो फ्लाई जोन ऐलाने गए ने। ब्रिक्स देशां दे राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तरां दे मुखियां दी 2 दिना मीटिंग अज उत्तर प्रदेश दे लखनऊ विच शुरू होएगी। ए मीटिंग ब्रिक्स देशां जिन्हां च ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब ते संयुक्त अरब अमीरात शामिल ने दे प्रतिनिधियां नाल भारत दी प्रधानगी हेठ होएगी। कल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे विच एक शांति रैली दौरान एक पुलिस स्टेशन ते हुए आत्मघाती हमले विच घट्टो घट 14 लोग मारे गए ते एक दर्जन तो वध जख्मी हो गए। ए धमाका स्वात शांति रैली दौरान होया जो कि स्वात जिले के काबुल शहर विच पुलिस थाने दे सामने हो रही सी। अजे तक किसी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। बीती रात ग्लासगो विच राष्ट्रमंडल खेडां दी समाप्ति दे नाल 2030 अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेडां दी उल्टी गिनती अधिकारक तौर ते शुरू हो गई है। समाप्ति समारोह दौरान भारत ने दुनिया नूं अहमदाबाद आउण दा सद्दा दित्ता जो कि पुरातन दर्शन, आधुनिक कला ते सभ्याचारक शान दा एक विलक्षण मिश्रण है। इस दे नाल ही अधिकारक तौर ते 2030 विच खेडां दे शताब्दी एडिशन दी यात्रा दी शुरुआत हुई। 11 दिनों के मुकाबलों तो बाद भारतीय अथलीट ग्लासगो तो रवाना हुए। उन्होंने 39 तमगे जीते जिन्हां विच 13 सोने के 17 चांदी के अते 9 कांसी के तमगे शामिल ने। राष्ट्रमंडल खेडां की तमगा सूची विच भारत चौथे स्थान ते रहा। खेड मंत्रालय के सकत्तर हरी रंजन ने कहा कि देश के खिडारियों ने उम्मीद नालों वधिया कारगुजारी दिखाई है।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: आखिर से खास खबरें एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तियां ते नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की थी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा हल्कियां दिया जिमनी चोणां लई वोटां की गिनती शुरू हो गई है। 16वीं पंजाब विधानसभा का 7 दिना मानसून इजलास आज तो शुरू होएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय अंकड़ा दफ्तरां के मुखियां की 2 दिना मीटिंग अज उत्तर प्रदेश के लखनऊ भी शुरू होएगी। इस दे नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।

गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शान अनुष्का मनचंदा की आवाजों में, कुमार ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से ही गीत अभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन और साथियों की आवाजों में शंकर एहसान लॉय का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बसंती, मोहे रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती यार।
1: दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
2: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
2: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूं तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूं राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं, और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूं।

वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं, और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: से किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूं ने भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

बेजू बावरा फिल्म का ये गाना भी शास्त्रीय रचना पर आधारित है।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

0: फिल्म कोहिनूर।
1: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो रंग लो।
0: और फिर फिल्म मदर इंडिया।

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था।

एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

20 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आनिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

जिस रोते हो श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज दा अगला अंक जेड़ा की तुसी सुन सकोगे मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।

वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।

पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर

पारित हो रहे उस वीडियो को फर्जी बताया है जिसमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू होने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पालकी सवारी निकाली जाएगी। केरलम में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने सभी 14 जिलों में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का संभावना व्यक्त की है। राज्य में येलो अलर्ट भी जारी है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज होगी। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड रील्स में बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपके साथ इस घंटे रहूंगी मैं आकृति खंडूरी।

बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार और जायकेदार खबरें सुनते हैं आप बॉलीवुड ट्रेस में, जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से न्यूज ऑन एयर ऐप पर या फिर वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। हमेशा दिन के 24 घंटे आपके साथ रहता है आकाशवाणी रेनबो।

जी हाँ, बॉलीवुड रिस्क में बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम आपके लिए आपके साथ हैं। और साथ ही एक बार फिर बता देती हूँ कि हमेशा की तरह इस घंटे भी आपको मौका मिलेगा आज का बॉलीवुड सरताज बनने का। तो प्रोग्राम में जो बातें शेयर की जा रही हैं उसे ध्यान से सुनिए, और प्रोग्राम में छुपा ही होगा क्योंकि इन्हीं बातों में आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल भी, जिसे आप सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जब पहुंचाएंगे सही जवाब के साथ, तो बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और पुराने जानने वाले, पुराने सुनने वाले तो मुझे पता है उन्हें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर रटा हुआ है, लेकिन नए सुनने वालों को बताना चाहूंगी, व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070। और फिलहाल आज के प्रोग्राम में पहली अपडेट आ रही है टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म के बारे में। रेमो डिसूजा की ये फिल्म है, अनटाइटल्ड है, एक्शन फिल्म है, और स्टार कास्ट जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। टाइगर श्रॉफ की तो कंफर्मेशन हमने आपको बताई दी थी, साथ ही साथ अब एल्विश यादव भी इसमें आ गए हैं, और एक नया नाम जो हाल ही में पता चला है वो है नुसरत भरूचा का, जिनका नाम भी इस फिल्म के साथ जुड़ गया है। और टाइगर श्रॉफ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट अभिषेक बैनर्जी भी इस फिल्म में है। नुसरत भरूचा और अभिषेक बैनर्जी इसमें आए हैं, और फिल्म की कास्ट मतलब मजबूत पे मजबूत होती जा रही है। फिलहाल फिल्म का प्रोडक्शन जो है वो नीरज तिवारी और विकी जैन मिलकर कर रहे हैं, और 1 अगस्त से इसकी शूटिंग जो है इस फिल्म की शुरू हो चुकी है। बहुत ही लार्ज स्केल पर कमर्शियल एक्शन एंटरटेनर के तौर पर इस फिल्म को के बारे में बताया जा रहा है। वैसे टाइगर श्रॉफ की बात करूं तो रेमो डिसूजा के साथ ये दूसरी बार किसी फिल्म में काम कर रहे हैं। इससे पहले दोनों ने सुपर हीरो फिल्म फ्लाइंग जट में काम किया था, 2016 में ये रिलीज हुई थी। और वहीं पर इश्क विश्क रीबाउंड से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली पश्मीना रोशन भी अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। नुसरत भरूचा की तो हमने आपको बता ही दिया है। फिलहाल नुसरत जो है को लीड की मेरे बताई जा रही है, और पश्मीना रोशन जो है वो लीड रोल में बताई जा रही है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की खासियत है इसकी फ्रेश स्टार कास्ट, और देखते हैं टाइगर श्रॉफ, अभिषेक बैनर्जी और एल्विश यादव की तिकड़ी इस फिल्म में जो आ रही है तो आगे कैसे कैसे चलता है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जैसे हमने आपको बताया शुरू हो चुकी है, और आने आते आते फिल्म का टाइटल जैसे ही कन्फर्म होगा बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके लिए सबसे पहले पहुंचेगी ये खबर। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना

0: का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

शेखर विजयानी की आवाज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से ये ट्रैक आपके लिए लेकर आए थे हम आकाशवाणी रेनबो पर। बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं मैं आकृति। और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स को पहुंचाने का पूरा जिम्मा हमने यहां पर आपके लिए लिया हुआ है। फिलहाल अगले अपडेट बॉलीवुड से आ रही है हमारे पास महेश बाबू और एसएस राजामौली की 1400 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म। जी हाँ, फिल्म का नाम है वाराणसी और फिलहाल ये मूवी जो है अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है, यानी कि उसका आखिरी शेड्यूल जो है वो

शुरू हो चुका है और इसकी शूटिंग जो है, फिल्म का नाम है वाराणसी, और महेश बाबू और एसएस राजामौली की ये फिल्म आखिरी शेड्यूल की शूटिंग बची हुई है। आपको बताते हैं कि क्या क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट है। फिलहाल ज्यादा सीरियस और जो लेंदी पार्ट्स हैं उसकी शूटिंग तो ऑलरेडी पूरी कर ही गई थी, बस अब कुछ सीन्स हैं जो जिसको शूट करना बाकी है। और ऐसा बात की जा रही है कि बहुत ही जल्दी रामोजी सिटी फिल्म सिटी में इसकी शूटिंग की जाएगी, और बहुत ही प्लानिंग के साथ राजामौली जो हैं, बड़ी सोच समझ के साथ, शेड्यूल्स के साथ फिल्म की शूटिंग उन्होंने अभी तक की है। वो माना जा रहा है अक्टूबर 2026 में फिल्म के सारे जो शेड्यूल्स हैं उनकी शूटिंग पूरी कर ली जाएगी और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल अब तक यही खबर आ रही है कि फिल्म जो है 7 अप्रैल जो है उसको रिलीज के लिए रखा गया है। लीड रोल में महेश बाबू का होगा और प्रियंका चोपड़ा जो हैं उनके ऑपोजिट जो हैं लीड एक्ट्रेस के किरदार में दिखाई देंगी, और पृथ्वीराज सुकुमारन जो हैं वो लीड विलेन के रूप में आएंगे। अब तक जो भी ग्लिम्स आए हैं पब्लिक ने खासा पसंद किया है। फिलहाल एग्जैक्टली इसकी क्या डेट होती है रिलीज की वो भी हम आपको जैसे ही हमें पता चलेगा बॉलीवुड में बताएंगे। फिलहाल एसएस राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर शानदार उनको रिस्पांस मिलता है, और आज तक उनका रिकॉर्ड है कि उनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। उनकी अभी तक की सारी, मतलब 4 फिल्म जो हैं वो ब्लॉकबस्टर रही हैं। एगा, बाहुबली, बाहुबली 2, RRR जैसी फिल्म्स का नाम शामिल है, और ऐसे में अब वाराणसी भी ब्लॉकबस्टर होती है तो ये बैक टू बैक उनकी 5वीं ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: फिर रखना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एब्सोल्युटली वेलकम बैक टू बॉलीवुड ट्रेल्स. आपके साथ हूं मैं आकृति और बॉलीवुड की अगली अपडेट हम तक आ रही है. वेलकम टू द जंगल की सफलता के बाद अक्षय कुमार और डायरेक्टर अहमद खान की जोड़ी के बारे में जो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर यानी कि सिल्वर स्क्रीन पर लौट रही है. एक नई फिल्म की शुरुआती चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं. फिलहाल अभी तक क्या कहानी होगी, कौन सी जॉनर की मूवी होगी, उस पर तो आखिरी स्टैंप नहीं लगी है. लेकिन ये खबर पक्की आई है कि इस जो फिल्म की बारे में चर्चाएं काफी जोरों शोरों से चल रही हैं. अक्षय की बात करें तो पहले से ही कल कई फिल्म्स की शूटिंग और रिलीज में वो बिजी हैं और अहमद भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं. लेकिन इसीलिए नई फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले दोनों अपनी अपनी अवेलेबल डेट्स और प्रोडक्शन टाइमलाइंस पर भी काम कर रहे हैं. पीछे काफी समय से चर्चा थी कि अहमद खान जो है अपनी अगली फिल्म टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर के साथ एक ज़ॉम्बी कॉमेडी के रूप में कर सकते हैं और वेलकम फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को लेकर भी काफी खबर जो है चल रही थी. फिलहाल पता ही हमें कि अहमद के डायरेक्शन का जो स्टाइल है और अक्षय की जो स्क्रीन प्रेजेंस है एक्शन फिल्म्स में बहुत अच्छा उनका तालमेल बैठता है. दोनों पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं और अब ये जो नया प्रोजेक्ट आएगा वो कब शुरू होगा, जैसे ही खबर मिलती है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे. फिलहाल ये खबर पक्की है कि दोनों एक नए प्रोजेक्ट में साथ साथ आ रहे हैं.

जैसे अगस्त के महीना शुरू हो चुका है और अगस्त के महीने में बहुत सारी फिल्म्स हैं जो बॉलीवुड के स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। कुछ फिल्म्स के बारे में बता देते हैं आपको। ओ माय गॉड, पंकज त्रिपाठी की ये फिल्म है, 7 अगस्त को 2026 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो रही है। और पंकज के अलावा इसमें पवन मल्होत्रा, राजेश कुमार और माही रॉय भी हैं। पहले ये 31 जुलाई को आने वाली थी, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया। इमरान हाशमी की आवारापन 2, जी हाँ, इसका भी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है। शबाना आजमी इसमें विलेन के रोल में दिखाई देंगी। दिशा पाटनी भी इस फिल्म का हिस्सा है। पहला पार्ट यानी कि आवारापन लोगों ने काफी पसंद किया था। देखते हैं सीक्वल कैसा रहेगा। बंटवारा 1947 के बारे में बार बार हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में। सनी देओल एक बार फिर से एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। ट्रेलर सामने आ गया है। 14 अगस्त को फिल्म हो रही है ये रिलीज। और सनी बाजी के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह इस फिल्म में है। और इसके अलावा टॉक्सिक, जी हाँ, रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, 26 अगस्त को रिलीज हो रही है। और कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया भी इस फिल्म में हैं। और रक्षाबंधन के मौके पर श्रद्धा कपूर की ईठा यानी कि 28 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है। इसमें ये लावणी कलाकार विठाबाई नारायण गायकर की जिंदगी पर बेस्ड है, उसका किरदार निभा रही है श्रद्धा। और खोसला का घोसला 2, जी हाँ, 28 अगस्त 2026 को ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और दिव्या खोसला साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। प्रशांत भाटिया ने इस फिल्म को बनाया है। पहला पार्ट काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसी फिल्म का ट्रैक आपके लिए बजाती हूँ कैलाश खेर की आवाज में।

बॉलीवुड सरताज सवाल का इंतजार है ना आपको? जी हाँ, आ चुका है वो पल जब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल, जिसका सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले पहुंचाने वाला बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज। तो सवाल आपके लिए ये है कि एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म का आपको हमें नाम बताना है। एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म का नाम आपको हमें बताना है। इस फिल्म में महेश बापू हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं मेन किरदार में, और ये फिल्म 7 अप्रैल अगले साल यानी कि 2027 को रिलीज हो रही है। जी हाँ, बताइए हमें एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म का नाम। बहुत चर्चा इसकी चल रही है, आखिरी शेड्यूल इसका शुरू होने वाला है, और महेश बाबू प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में मेन किरदार निभा रहे हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और इसी के साथ बॉलीवुड रील्स समाप्त करने का समय आ चुका है, लेकिन बॉलीवुड सरताज आज का कौन बन रहा है जरूर आपको बताने वाले हैं हम। हमने आपसे सवाल पूछा था एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म का नाम बताइए, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मेन कैरेक्टर्स में हैं। आपके बहुत से सवाल के सही जवाब हम तक पहुंचे हैं, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जो कि है वाराणसी, वाराणसी जी हां, बताने वाले हैं प्रवीण चौहान साहब खारगांव मध्य प्रदेश से, और बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। वैसे उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया, जल्दी से सभी का नाम लेना चाहूंगी। वाराणसी बताने वाली हैं तनुजा शाह, इसके अलावा दानिश खतौली से सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब हम तक आया है, सागर सिंह रावत गढ़वाल से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, कंचन सोनिया बिहार से, शंकर गोवा से, सीमा मेरठ से, और धर्म भाटिया जी तरुण कोहली साहब का सही जवाब, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कायम कीर्तिनगर से, शिवम कुमार पटना साहिब से हम फोन कर रहे हैं, ये हैं बसंत तोमर साहब, विनोद सोनी साहब, उमेश कुमार, कृष्ण कुमार साहब का भी सही जवाब हम तक आया, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, हरीश कौर साहब, ऋषुर कटारिया। लेकिन सबसे बड़ी बधाई जा रही है आज के प्रोग्राम में प्रवीण चौहान साहब को मध्य प्रदेश से, जो हमसे जुड़े हैं और हमें इस सवाल का सबसे सही जवाब यानी कि वाराणसी बताया है। तो इसी के साथ मुझे यानी आकृति को भी आज के प्रोग्राम से दीजिए विदा। 1 बजे आपसे मुलाकात होगी रेनबो हेल्पलाइन में, जिसमें आज हम बात करेंगे मिड एंट्री इन CUET के बारे में। एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सोनकर जो कि डेप्यूटी डीन एडमिशन से हमारे साथ रहेंगे कुछ ही मिनटों में। पूजा स्टूडियो में बस एंटर ही करने वाली हैं प्लेट कूल लेकर, और 2 बजे आशियाना में शालिनी खंडेलवाल आपके साथ रहेंगे, और 3 बजे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आज बात होगी चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा, डॉक्टर रीना अरोरा आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हमारे साथ रहेंगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में

भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कि आजकल जंक फूड इतना ज्यादा लिए जा रहा है, फैटी फूड्स खाते हैं, अपन तलिया हुआ खाते हैं, है ना, वो उससे हमें परहेज रखना चाहिए। एक मीठा हाई शुगर अगर लेते हैं वो भी अपन कम कर दें तो वो है। एक जो जैसे स्मोकिंग, कई कैंसर होते हैं जो सिगरेट स्मोकिंग से बढ़ते हैं, स्पेशली इसमें फेफड़े के कैंसर माना जाता है, वो भी कैंसर का कारण हो सकते हैं। और कारणों में अगर हम जाएं तो जैसे मोटापा, इवन मोटापा भी रिस्क फैक्टर है, यानी कि कैंसर के चांस बढ़ा सकता है। और जैसे कि आजकल सारे लोग बैठे रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं करते, या वो भी अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अगर एक्सरसाइज नहीं की जाए, वो भी कैंसर का एक रीजन बन सकता है। बट डायरेक्टली कोई इसकी वजह से कैंसर होता है उसका कोई वजह नहीं।
1: सुस्त जीवन है जेड़ा सानू नजरअंदाज करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जी मैडम, तुसी कारना बारे तुसी गल कर रहे हो ते नाल फिर शुरुआती लक्षण किसी भी कैंसर दे की हो सकते ने जेड़े सानू बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए।
0: देखिये मैं ये हर कैंसर के अलग टाइप के लक्षण होते हैं, बिकॉज जो अदर जहां जहां होता है, जैसे अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें यानी कि स्तन का कैंसर, उसमें वो एक गांठ की तरह शुरुआत होगी और जो वो गांठ होती है पेशेंट्स को, मरीजों को लगता है कि वो दर्द करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरुआती उसमें वो बस एक छोटी सी गांठ होती है जो चुपचाप बढ़ रही होती है। वो कोई दर्द तभी करेगी जब वो बहुत बड़ी फैल जाती है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि क्या छाती में कोई छोटी सी गांठ पैदा हो रही है, है ना। दूसरा कैंसर जैसे अगर बच्चेदानी का या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसकी हम बात करें, उसमें मरीज को जो सिम्टम्स यानी कि आते हैं वो ये है कि महीना थोड़ा सा गड़बड़ होने लगेगा, ज्यादा आने लगेगा, या जो महीना बंद हो जाता है, जैसे कोई उम्र के बाद 50 साल के बाद जब महीना बंद हो जाए, उसके बाद अगर महीना आना शुरू हो जाए, वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग साइन है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। एक अंडेदानी का जो कैंसर है उसमें पेशेंट को अफ्रेमा हो सकता है या फिर कोई पचने में कोई प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम। तो हर कैंसर का अपना अलग अलग सिम्टम होता है।
1: जी जी मैम, असी भैणा दा प्रोग्राम है ते एक श्रोता साडे नाल टेलीफोन लाइन ते जुड़े ने, करदे आ उहनां दे नाल गल। हैलो हैलो जी, शायद किसी कारण जिहड़ी कॉल है डिसकनैक्ट हो गई है। चलो आपां अपनी गलबात इसे तरह जारी रखते हैं। असीं गल कर रहे सी शुरुआती लक्षणां बारे जिन्हां नूं सानूं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ते ब्रेस्ट कैंसर दी असीं गल कर रहे सी। तां ब्रेस्ट कैंसर दे विच तुसीं इह दस्सिया वी कोई भी गंढ है या गिल्टी है जिहड़ी उह अगे जाके कैंसर बन सकदी है, ते की हर गंढ या गिल्टी अगे जाके कैंसर दा रूप लै लैंदी है या सानूं स्वै जांच या कोई टैस्ट दी लोड़ पैंदी है इस चीज़ वास्ते?
0: जी बिल्कुल, हर गांठ कैंसर नहीं होती
1: जी,
0: क्योंकि कैंसर से मरीज इतना डर जाता है, स्पेशली जो अपना जो ये मालवा बेल्ट है वहां पे तो और भी ज्यादा पेशेंट्स को डर रहता है
1: जी।
0: हर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, लेकिन हम नजरअंदाज नहीं करेंगे
1: जी।
0: जो अगर आप कहना चाहें कि कैसे पता लगता है, तो हर महिला को अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि खुद से ब्रेस्ट पे हाथ रख के देखना चाहिए, रेगुलर स्वय जांच करनी चाहिए कि कहीं कोई गिल्टी तो नहीं बन रही है
1: जी।
0: और ये जांच जो है वो पीरियड के बाद भी आप कर सकते हैं, वैसे कभी भी किया जा सकता है। और जैसे 40-45 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं उनको मेमोग्राफी का भी हेल्प वो ले सकती है, जैसे कि मेमोग्राफी जो होती है टेस्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, इसमें ये एक्सरे से भी हो सकता है एंड अल्ट्रासाउंड द्वारा भी की जा सकती है
1: जी। मैम असी औरतां विच होण वाले कैंसर बारे गल कर रहे हैं, श्रोतां नूं दस दिए ते हुण असी गल टेस्ट बारे ही करांगे, जिवें जे ब्रेस्ट कैंसर है तां सानूं उहदे वास्ते किहड़ा टेस्ट करवाना चाहीदा है, जे इसे तरह सानूं बच्चेदानी दे मुँह दा कोई भी बीमारी है तां सानूं अग्गे जाके डॉक्टर ही दसेगा, स्क्रीनिंग करे चाहे टेस्ट करे भी सानूं कोई बीमारी है या नहीं है। असी तां हाल फिलहाल अपने डेली रूटीन दे विच शरीर दे विच कोई सिम्पटम ही फॉलो कर रहे हुंदे आ, है ना, तां सानूं किहड़े टेस्ट है जिहड़े करवाने चाहीदे है भी असी एग्जैक्ट हॉस्पिटल दे विच भी जाइए ते सानू उत्थे भी कोई जिहड़ी मिस गाइडेंस दा जिहड़ा सामना ना करना पवे?
0: देखिए कोई भी बीमारी है उसका अगर हमें इलाज चाहिए तो वो पकड़ में जल्दी आनी चाहिए
1: जी,
0: है ना। अगर हम जितनी जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ सके इसका मतलब कि उसका क्योर है, मतलब इलाज हमें मिल जाएगा। तो मैं दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में, वो एक ब्रेस्ट कैंसर है, एक सर्वाइकल कैंसर है यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, और छाती का कैंसर, स्तनों का कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को अगर हमें जल्दी पकड़ना है तो उसमें ये है कि स्वय जांच।

0: ये बहुत मामूली चीज है, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत बड़ा है
1: जी।
0: क्योंकि अगर मरीज महिलाएं खुद का स्वय जांच करती है, खुद के ब्रेस्ट को या छाती को स्वय जांच करती हैं, तो उन्हें गिल्टी जल्दी पता चल जाएंगी, जिससे कि वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए दोबारा जल्दी चले जाएंगे, तो उससे उनकी बीमारी जल्दी पकड़ आएगी और वो कैंसर अगर होता भी है, अगर वो कैंसर निकलता भी है, तो उससे उनका इलाज हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। और स्वय जांच की इतनी बहुत जरूरी है क्योंकि जो महिलाएं हैं, कितनों को टाइम मिलता है बिजी शेड्यूल से, अपने घर के कामों से, कि वो हॉस्पिटल जा सकें मैमोग्राफी के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए। तो सबसे जो अच्छा मतलब अगर टेस्ट आप मानेंगे तो वो है कि घर पे वो अपना स्वय जांच करें। अगर उन्हें कभी भी लगता है कि कोई गांठ है, तो वो जरूर हॉस्पिटल आके हमसे, डॉक्टर से चेकअप

0: कैंसर निकलता भी है तो उससे उनका इलाज हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। और स्वयं जांच की इतनी बहुत जरूरी है क्योंकि जो महिलाएं हैं, कितनों को टाइम मिलता है बिजी शेड्यूल से, अपने घर के कामों से, कि वो हॉस्पिटल जा सकें मैमोग्राफी के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए। तो सबसे जो अच्छा मतलब अगर टेस्ट आप मानेंगे तो वो है कि घर पे वो अपना स्वयं जांच करें। अगर उन्हें कभी भी लगता है कि कोई गांठ है तो वो जरूर हॉस्पिटल आके हमसे, डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं। और दूसरा जो कैंसर है, जो अलग कॉमन कैंसर बहुत पाया जाता है महिलाओं में, वो है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर।
1: जी, समा 12:38 46 सैकेंड साढ़े स्टूडियो का नंबर 0164-242-3131 जेड़ा डायल हो चुके हैं। तो करते हैं कि श्रोतागण साढ़े नाल जुड़े ने, गल करिए। हैलो हैलो हेलो
0: तो जैसे कि मैं बता रही थी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर,
1: जी,
0: इसके लिए जो टेस्ट होता है वो है पैप्स टेस्ट एंड एचपीवी डीएनए।
1: जी,
0: तो ये जो टेस्ट है ये हर महिला को 30 साल के बाद कराना चाहिए।
1: जी,
0: जो पैप्स टेस्ट है ये बच्चेदानी के मुंह के पानी की जांच होती है, और एचपीवी डीएनए टेस्ट ये एलबीसी के थ्रू होता है, ये भी पानी की जांच होती है। ये दोनों टेस्ट अगर हम कराते हैं तो इसकी जो गारंटी है ये 5 साल की है। तो हर 5 साल में ये टेस्ट होना चाहिए 30 साल के बाद हर महिला का।
1: जी, 30 साल तो स्टार्ट होके फिर सानू हर 5 साल ते टेस्ट अपना
0: करवाना चाहिए। लेकिन कई बार टाइम ना मिले तो ये कहा जाता है कि 35 साल और 45 साल पे तो जरूर कराएं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये कैंसर को होने से पहले ही पकड़ लेता है। तो पैप्स टेस्ट और एचपीवी डीएनए टेस्ट ये काफी जरूरी टेस्ट हैं दोनों।
1: जी, असी गल यही कर रहे हैं कि अक्सर मन्या जांदा जिहड़ी कुछ रोग है जेनेटिक रोग मन्ने जांदे ने, वी जे पिछली पीढ़ी दे विच रोग ने तां उह अगली पीढ़ी दे विच ऑटोमैटिकली चले जांदे ने। जिवें अक्सर शायद मेरा वी मिथ होवे वी जिवें शुगर मन्या जांदा वी जेनेटिक रोग हुंदा है, ते कि इह जिहड़ा कैंसर है इह वी जेनेटिक रोग हुंदा है?
0: हाँ जी, कुछ कुछ कैंसर जेनेटिक होते हैं, यानी कि परिवार में रन करते हैं, परिवार में पाए जाते हैं, ये कोई जीन डिफेक्ट की वजह से होते हैं। लेकिन ये जो कैंसर है, एक जो रब ने अच्छी चीज दी है कि ये कम होते हैं, मतलब 5-10% गाइनी कैंसर यानी महिलाओं में जो कैंसर है वो जेनेटिक है, यानी कि 90% जेनेटिक नहीं है।
1: जी,
0: तो जो जेनेटिक कैंसर होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमनली मतलब पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में। तो इसके काफी अलग स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं, ये हम तब रन करते हैं, ये हर महिला को जरूरत नहीं है कराने की। अगर उनकी उनकी माँ को था या फिर उनकी बहनों को ब्रेस्ट कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर जिसे हम यूट्राइन कैंसर या अंडेदानी का कैंसर हुआ है, और दादी को था, नानी को था, अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है यानी कोई ऐसी हमें पता लगती है तो ही हम फर्दर टेस्टिंग के लिए जाते हैं। वरना ये जेनेटिक लिंक जो है यानी कि परिवार में कैंसर पाया जाना ये ज्यादा कॉमन नहीं है, और हर किसी को इस टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है।
1: जी, एक और कॉल साढ़े नाल श्रोतागण जुड़े ने, करते हैं उन्होंने नाल गल। हैलो
2: हैलो
1: हां जी, सत श्री अकाल जी।
2: तो उनको शिकायत हो गई थी ना कैंसर की थोड़ी सी जी। अब ना उसमें ऑपरेशन करवाया था जी, उसमें गांठें बन रही हैं जी।
0: पैर में गांठें बन रही हैं?
2: हाँ जी, वो ना क्या ऑपरेशन करवाया था ना, पैर काट दिया था उनका।
0: हाँ जी,
2: तो उसका नीचे ना गोदे घुटने के नीचे से काट दिया था, तो उसके नीचे ना वो गांठ बनती है छोटी छोटी, रेशा बढ़ता है थोड़ा।
0: हाँ, जो इनको गांठ पड़ रही है ये कब से पड़ रही है?
2: ये ना के मन के कल वो पैर चढ़ाया ना दूसरा ना के जड़ा बनता है क्या, नकली पैर बनवाया था।
0: हाँ हाँ,
2: तो उसके बाद बनने लगी है।
0: तो मतलब 1-2 साल से या 4-5 साल से?

0: ये 5 साल हो गए।
1: हाँ, तो मेरे हिसाब से जैसे आप मुझे बता रहे हैं बात, 5 साल से मुझे लगता नहीं कि वो गाँठे कैंसर है ना,
0: अच्छा
1: क्योंकि कैंसर 5 साल तक ऐसे रुकेगा नहीं। ये जो आप
0: अच्छा
1: शायद जो लिंब लगाते हो यानी जो नकली पैर लगाते हो, उससे रगड़ खा खा
0: हाँ
1: के वो गाँठे बनने शुरू हो गई
0: जी
1: है ना, तो
0: हाँ
1: उसके,
0: जी
1: हाँ, तो वो उसी की वजह से हो रही है। और उसमें कभी कभी वो रगड़ जाती है, चमड़ी उधड़ जाती है, तो पानी भी पड़ सकता है। इसके लिए
0: अच्छा
1: आप कोई भी हड्डी वाले डॉक्टर या ऑर्थो वाले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए, पर
0: अच्छा
1: मुझे नहीं लगता कि ये कैंसर है।
0: ठीक है।
1: हाँ जी, बट फिर भी जैसे मैं आपसे ऑन एयर बात कर रही हूँ, पेशेंट को चेकअप कराना पास देखने की अलग बात होती है, तो आप किस डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
2: जी शुक्रिया। प्रोग्राम के तहत गल करने ली जी ते असी गल कर रहे हाँ। प्रोग्राम के तहत विषय है साडा औरतां नूं होण वाले कैंसर बारे, ते असी गल कर रहे सी कि जेनेटिक कैंसर हुंदा है, ते जेड़े तुसी गल कीती मैम भी जेनेटिक कैंसर 90% है जेड़े नहीं
1: नहीं
2: हुंदे, है
1: होते।
2: ना। ते जे सानू इहदी टेस्टिंग करवानी पवे तां फिर ओह किस एज ग्रुप ते आके सानू सोचना चाहिदा, क्योंकि महिलावां नूं आपां सुचेत कर रहे हैं कि अपनी सेहत नूं लैके जागरूक रहन, ते किस एज तों उहनां नूं इह टेस्टिंग बारे सोच लेना चाहिदा वी चलो ना होवे तां असी फ्यूचर च वी जेड़े सौखे रहिए।
1: नहीं, जैसे ये कैंसर बहुत कॉमन नहीं होते, नहीं पाए जाते, तो इसकी टेस्टिंग तभी करनी है अगर कोई परिवार में हिस्ट्री है। तो वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, काफी महंगे टेस्ट हैं। उस
2: जी
1: वो हम रूटीनली नहीं करते हैं मरीजों में, वो बस उसके कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें करा जाता है ना।
2: जी
1: जैसे अगर माँ को कैंसर 40 साल पे हुआ है, तो उसकी बेटी की टेस्टिंग होगी, अगर उसको पॉजिटिव आता है फिर फर्दर टेस्टिंग होती है। तो वो बहुत ही अलग एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम कॉमनली बात की जाए, तो हमें जैसे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए पैप्स टेस्ट, पैप स्मियर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ये टेस्टिंग 30 साल के बाद शुरू होनी चाहिए,
2: जी
1: है ना, एंड 65 साल तक हम करते हैं पैप्स टेस्ट, जो पानी की जांच है, जिससे कि बच्चेदानी का कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कैंसर बनने से पहले पकड़ में आ जाए।
2: जी ते असीं गल करते हैं कि औरतों नूं होण वाले कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बारे भी असीं गल कर रहे हैं, या बच्चेदानी दा कैंसर, ते उहदे विच सानू की लक्षण नजर आंदे आ, भी सानू पता लगे भी सानू कोई बीमारी है, कि साडे पीरियड्स दी गड़बड़ी हुंदी है, या कोई होर तुसीं दसना चाहोगे।
1: देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है यानी कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, ये एक वायरस की वजह से होता है,
2: जी
1: जिसे हम HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं।
2: जी
1: ये 90-95% वायरस की वजह से ही होता है। और इसके कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि
2: जी
1: ये कौन कौन महिलाओं में ज्यादा हो सकता है रिस्क। वो ये है कि अगर, जैसे कि अगर महिलाओं के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, यानी कि आज जैसे एक से ज्यादा लोगों से, 4 या 5 लोगों से शारीरिक संबंध होना, ये एक रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। दूसरा ये है कि जैसे लो सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि जो जो इकोनॉमिकली, जिनके जो इकोनॉमिकली ज्यादा पर्याप्त नहीं है, उनमें भी हो सकता है। और जिन्होंने HPV वैक्सीन, जो कि वैक्सीन आती है सर्वाइकल कैंसर की, अगर वो वैक्सीन नहीं लगाई तो भी वो हाई रिस्क होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। और इसके जो लक्षण हैं, वो लक्षण होते हैं जैसे हस्बैंड से मिलने के बाद ब्लीडिंग होना,
2: जी
1: यानी कि शारीरिक संबंध के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, तो ये भी शक जाता है कि कहीं वो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर तो नहीं है। ये सर्वाइकल कैंसर के 30% लोगों में पाया जाता है, 30 से 35% में। दूसरा, महावारी ज्यादा आना, या फिर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना,
2: जी
1: कि जैसे मुझे महीना, 1 महीने पहले आया था, अब मुझे 15 दिन बाद फिर से दाग पड़ रहा है, या फिर चिट्टा पै रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है। तो ये भी, इस अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो भी जरूर डॉक्टर के पास जाके आप चेकअप कराइए। और एक होता है महीना बंद होने के बाद ब्लीडिंग होना, यानी कि जैसे महावारी बंद हो जाती है जैसे 45-50 साल में,
2: जी
1: जिसे हम मेनोपॉज भी कहते हैं,
2: जी
1: उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उसके 1 साल 2 साल बाद या कभी भी ब्लीडिंग होती है, ये भी बच्चेदानी की कैंसर की तरफ बहुत ही हाई रिस्क माना जाता है।
2: जी मैम तुसी गल कर रहे हो कि जेड़े पीरियड्स है
3: हर औरत दी सेहत हर परिवार दी खुशहाली दी नी हुंदी है। जे तुसी गर्भ अवस्था दी देखभाल, महावारियां दी समस्यावां, बांझपन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या किसी भी गायनोकोलॉजी संबंधी समस्या दा हल लभ रहे हो, तां आओ कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: हर औरत दी सेहत हर परिवार दी खुशहाली दी नी हुंदी है। जे तुसी गर्भ अवस्था दी देखभाल, महावारियां दी समस्यावां, बांझपन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या किसी भी गायनोकोलॉजी संबंधी समस्या दा हल लभ रहे हो, ता आओ कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बठिंडा। इथे महिलावां दी सेहत लई तजर्बेकार गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता रावत उपलब्ध हन। अज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो अते माहिर डॉक्टरी सलाह नाल अपनी सेहत नूं दिओ सही देखभाल। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हर कदम ते तुहाडी सेहत दा भरोसेमंद साथी। फोन करो 7431000 एंड 0164512200।
2: जी प्रोग्राम है घर परिवार ते आज सिलसिला है सेहत संभाल ते तुसी साडे स्टूडियो दा नंबर डायल करना है 0164242331। एक श्रोता साडे नाल होर जुड़े ने, करदे हां उहनां दे नाल गल। हैलो।
3: हां जी हेलो।
2: नमस्कार जी।
3: हां जी नमस्कार डॉक्टर
2: जी। मैं सीमा कटारिया ते तुहाडा अगला जिहड़ा सवाल है तुसी मैडम साडे डॉक्टर जिहड़े ने उहनां नूं पाणा है ते तुसी अपनी गल पूछ सकते हो।
3: ठीक है जी।
4: हैलो।
3: हां जी डॉक्टर नमस्कार।
4: हां जी नमस्ते।
3: हां जी डॉक्टर मैं ना ये पूछना जी, जिवें आपां कोई इस तरह दा टेस्ट करवाईए ते आपां नूं कोई भी बीमारी है पता चल जाए भी आ बीमारी है,
4: नहीं देखो ऐसे तो हजार तरह के टेस्ट बने हैं ना, तो वो अगर हम चाहें तो है तो सही, पर उदा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी होने से पहले कोई ना कोई अपना संकेत देती है, है ना। होल बॉडी स्क्रीनिंग या हम जैसे पेट स्कैन है वो करवाना वो सही नहीं रहेगा, है ना। तो अगर कोई तकलीफ है तो ही आपको करना है। वो तो वैसा है कि कोई टेस्ट करा लिया जी, चलो जी वहम हो गया मेरे को, ये मेरा कट बद गया, है ना। तो वैसा तो कोई टेस्ट नहीं है एक, है ना, तो और ना ही हमें कराना चाहिए।
3: ठीक
4: है। हाँ जी।
3: तो फिर पता की है मैनू ना ब्लीडिंग जिवें पहला एज थी उदो तो बहुत घट हुंदी सी, उस तो बाद 45-46 साल दी उम्र च आके मेनू बहुत ब्लीडिंग होण लग गई।
4: अच्छा ठीक है, थोड़ी उम्र 45 साल है।
3: नहीं नहीं जी हुण तां मेरी 58 साल है।
4: अच्छा हुणे ब्लीडिंग हैगी तुहानू?
3: मेनू 3-4 साल हो गए, मैं इमेज चों टेस्ट वगैरा करवाउंदी रही, दवाई लई है।
4: ठीक है।
3: ओ कहिंदे सी कोई तकलीफ तां आउंदी नहीं, कहिंदे की करिए।
4: देखिए आप कह रहे हो 45 साल पे ज्यादा ब्लीडिंग हुई, वो हो सकता है कई बार महीना बंद होने से पहले थोड़ा महीना ज्यादा कम घट वध आंदा है, ठीक है, तो वही हुआ होगा, लेकिन महीना बंद होने के बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: नहीं डॉक्टर बंद तो पता ही नहीं चला ना, जो पहला सी उदो बहुत घट वध आउंदी रही, हुण ज्यादा ही आउण लग गई सी, ते हुण भी जिवें 2 साल तो 6 महीने तो हो जाता है।
4: अच्छा अभी बंद नहीं हुआ है आपको?
3: नहीं,
4: हो रहा है।
3: हाँ
4: तो ठीक है, जैसे 2-6 महीने पे आता है तो हो सकता है आपका पीरियड बंद होने वाला है।
3: हाँ,
4: है ना। और आपने अगर आप एम्स गए हो तो वहाँ पे आपने पानी की जांच, पैप स्मेयर ये सब करवाया ही होगा।
3: हाँ, जी, वो टेस्ट।
4: हाँ अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो बेफिक्र आप रह सकते हैं, क्योंकि जो पैप स्मेयर है अगर वो नॉर्मल है तो 3 साल की गारंटी है कि सर्वाइकल कैंसर या ये सब नहीं होगा।
3: ठीक
4: है ना, वो बंद होने से पहले थोड़ा वो होगा, बट ये अच्छी बात है कि आप हॉस्पिटल गए, आपने चेकअप सारा कुछ करवाया है।
3: हाँ जी।
4: तो अगर नहीं निकला है तो नहीं है।

0: हाँ जी, वो कहने हुण ऑपरेशन भी कादा करिए जो कोई सॉल्व ही नहीं
1: हाँ,
0: कुछ
1: वो थोड़ा
0: भी।
1: सा डर के हिसाब से हम कई बार कह देते हैं कि जी काट दो, कि करना है बाद से कुछ हो जाऊगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके टेस्ट नॉर्मल है तो आप प्लीज मत कराइए
0: सर
1: अननेसेसरी।
0: बहन बहुत होता है मेरे को, बहुत जलन होती है जब पीरियड होता है ना, तो 2 दिन इतनी जलन होती है
1: वो
0: ना, ऐसे
1: आपको
0: लगता है।
1: कई बार हॉर्मोन्स की कमी की वजह से हो सकता है, जैसे अभी बंद होने वाले हैं, उसका अलग इलाज है, उसका ऑपरेशन नहीं होगा, वो कुछ उसके क्रीम्स आते हैं या वो हैं, वो आप करवा सकते हैं।
0: ठीक है
1: हाँ जी,
0: ठीक है, थैंक
1: ओके, वेलकम।
0: यू।
2: जी, प्रोग्राम घर परिवार विशा सेहत संभाल ते असी अज गल कर रहे हाँ औरतों नू होण वाले कैंसर बारे, जिस तहत असी कारण लक्षण ते टेस्टिंग है जिहड़ी उस बारे गल कर चुके हैं। ते हुण मैडम तुसी सानू दसो कि केड़े वैक्सीनेशन है जिहड़ी सानू कंपलसरी हुंदी है, सानू करवाउणी चाहीदी है, या उहदा एज ग्रुप की हुंदा है?
1: हाँ जी, एक जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर है, यानी कि जो कैंसर वैक्सीन लगा के यानी टीका लगा के,
2: जी
1: जैसे बच्चों में हम डिफ्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस का टीका लगाते हैं,
2: जी
1: है ना, वो नवजात शिशु में लगाते हैं और छोटे बच्चों में लगाते हैं, तो जो महिलाओं के कैंसर में अगर कोई कैंसर है जो वैक्सीन से नहीं होता है, वैक्सीन लगाने से बचाव हो सकती है, वो
2: जी
1: है सर्वाइकल कैंसर,
2: जी
1: है ना, जो कि सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ना। तो ये है कि ये अगर हम वैक्सीन लगाएं यानी कि इसका टीका लगाएं तो हम तो ये कैंसर नहीं होगा, है ना। और ये जो टीका होता है, ये जो टीका है ये इसकी क्या है, वैक्सीन का ये लॉजिक है कि जो सर्वाइकल कैंसर है यानी कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, ये होता है वायरस से,
2: जी
1: जो कि एचपीवी वायरस है। एचपीवी वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इसके बहुत सारे स्ट्रेन है। तो वैक्सीन में हम जैसे तीन तरह की वैक्सीन आती है, एक है, हाँ
2: जी असी गलबात साड़ी इसी तरह जारी रखांगे, ते एक होर श्रोता साडे नाल टेलीफोन लाइन ते ने, ते कर दियो उहनां दे नाल गल। हैलो,
3: ठीक है। हाँ जी, सत
2: सत श्री अकाल जी।
3: श्री अकाल जी, स्वागत
2: जी स्वागत है प्रोग्राम दे तहत।
3: जी, सत श्री अकाल जी, डॉक्टर साहब को पूछना है।
2: हाँ जी पूछो। हाँ
3: सत
2: जी
3: श्री अकाल डॉक्टर साहब,
1: सत श्री अकाल।
3: 40-45 साल की गंढ है ढिड च आई,
1: टिड च कित्थे है?
3: ये अपने ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1: हाँ नहीं, उत्ते उत्ते है कि अंदरों है, लाइक बच्चेदानी में है कि पेट पे बाहर है?
3: जी
1: हाँ ठीक है, तो
3: ना
1: जैसा कि आप बता रहे हो, कितने टाइम से है ये गांठ? 1 साल 2 साल?
3: 40 साल से रेडी हो गई जी,
1: नहीं, कदों तो है ये गांठ?
3: 40 साल हो गए जी इनका।
1: हाँ बस ठीक है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 40 साल से गांठ पड़ी हुई है तो ये कई बार या तो मतलब लाइपोमा कहते हैं, जो कि अपनी चर्बी की गांठ होती है वो बन जाती है।
3: ठीक है, 7 बजे जी, सत श्री अकाल जी।
1: हाँ जी, तो वो उसके लिए अगर इस गांठ में कोई, हेलो,
3: हाँ जी,
1: अगर ये गांठ में कोई बदलाव आएगा यानी कि अचानक दर्द करेगी या बढ़ेगी वधेगी,
3: ना जी,
1: हाँ ऐसा कुछ नहीं है तो कोई गाल नहीं, जब वधेगी तब आप इसको चेकअप के लिए अस्पताल जा सकते हैं, वैसे 40 साल तक पई है तो कुछ नहीं होगा इसमें।
3: जी सत श्री अकाल
1: सत
3: जी।
1: श्री अकाल
2: जी, शुक्रिया। ते असी गल कर रहे सी वैक्सीनेशन बारे।
1: हाँ जी, तो जो वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की, ये एक जो कैंसर होता है ये एचपीवी वायरस से होता है। इस वायरस के बहुत स्ट्रेन्स हैं, कैंसर स्ट्रेन्स हैं, जैसे 16, 18, 31, 33, 45, 56। तो ये जो 56, ये सारे जो स्ट्रेन्स है, ये वायरस जो है ये सर्वाइकल कैंसर करते हैं। तो अगर हम इसका टीका लगा लें तो महिलाएं इस कैंसर से बच जाएंगी।
2: जी
1: अब ये टीका किनको लगाना चाहिए,
2: जी
1: ये सवाल आता है। ये टीका 9 साल के बाद लड़कियों को भी और लड़कों को भी लगाना चाहिए,
2: जी
1: है ना, 9 से लेके 15 साल के बेटी या बेटा दोनों को
2: जी जी
1: लगाइए। और क्योंकि जो ये सर्वाइकल कैंसर है ये शारीरिक संबंध से फैलता है,
2: जी
1: तो अगर हम सिर्फ बेटियों को लगाएंगे और बेटों को नहीं लगाएंगे तो हम कंप्लीटली कैंसर को अपने जो सोसाइटी से खत्म नहीं कर पाएंगे।
2: जी
1: तो टीके का यही मतलब होता है कि दोनों को लगाया जाए। और 9 साल से लेके 15 साल की उम्र में 2 डोज लगती हैं,
2: जी
1: जैसे कि आज 1 डोज लगी तो 6 महीने के बाद सेकेंड डोज लगेगी,
2: जी
1: लेकिन 15 साल से लेके 40-45 साल तक भी लगाया जा सकता है। इस टाइम पे 15 साल के ऊपर से 45 साल तक लगाया गया तो इसमें 3 डोज की रिक्वायरमेंट है,
2: जी
1: यानी कि इस टीके के 3 डोज लगेंगे, 0, 2 एंड 6, यानी कि आज 1 लग गया फिर

0: दो महीने के बाद लगेगा
1: जी,
0: और 6 महीने बाद लगेगा
1: जी।
0: ये जो वैक्सीन है ये पहले प्राइवेट सेक्टर में लगती थी
1: जी,
0: यानी कि प्राइवेट डॉक्टर्स लगाते थे, पेशेंट अपनी चॉइस से लगाते थे कि हमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में पता लगा, आप लगाइए। लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज हुई है वो इस साल से ये हुई है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हमारी भारत सरकार ने ये वैक्सीन 14 साल तक की लड़कियों के लिए ले आए हैं। तो अब इवन हर मरीज को टीकाकरण के थ्रू इसका फायदा होगा
1: जी। एक होस्ट रोजा साडे नाल टेलीफोन लाइन ते ने, करदे आ उन्ना दे नाल गल। हेलो
2: हेलो,
1: हां जी नमस्कार जी, अपना नाम दस्सियो।
2: रेनू जी
1: जी, ते हाँ अगला जी। सवाल डॉक्टर साहिबा जी नु पूछो।
2: हां सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल।
2: हां जी, मैं ना जी पूछन चाहती जी, मैं अपनो ब्लीडिंग हुंदी है
0: जो मेजरमेंट होती है ना वो हर लेडी की अपनी है। किसी लेडी के लिए 4 दिन नॉर्मल है, किसी के लिए 2 दिन भी नॉर्मल है। और जो ज्यादातर देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि जितने जैसे अपा जवान जब होते हैं तो ज्यादा फ्लो होता है ना, जैसे 20 साल की उम्र में या 25-30 तक बहुत ज्यादा फ्लो होता है और 5-6 दिन रहता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो ये कम होने लगता है ना, 4 दिन से अभी 2 दिन में आ जाता है। तो अगर आपको 2 दिन आते हैं और कम आते हैं तो वैसे घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि क्या आपको ब्लीडिंग के जैसे बंद हो गया उसके बाद फिर से आती है ब्लीडिंग, जिससे कि हम
2: वैसे तो रेगुलर है, बस ये था मुझे डाउट कि कितनी चाहिए। कई बोलते हैं कि 1 डॉट भी लग जाए तो आपको ब्लीडिंग आ गई, ऐसे होता है कि नहीं?
0: ये देखो इतना कम ब्लीडिंग होना, इसे हाइपोमेनोरिया कहते हैं, ये कुछ हार्मोन प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है।
2: ओके,
0: हाँ, बट ये कैंसर की वजह से नहीं है। कैंसर की वजह से अगर ब्लीडिंग होगी तो बहुत ज्यादा होगी, हैवी पीरियड्स आएंगे या इरेगुलर आएंगे, यानी कि अभी हुई 15 दिन बाद फिर हो गई
1: जी। असी गल की थी वैक्सीनेशन बारे, ते मैम मेरा अगला सवाल ये है कि जिवे कि हुन थोड़ा जा साडा आधुनिक खान पान हुंदा जा रहा है, ते जिहड़ी साडियां छोटियां बच्चियां ने हना, अजकल टाइम तो पहला जिहड़े बच्चियां दे विच जवानी वाले सिम्पटम्स तुसी कह सकदे हो भी जल्दी बच्चे ग्रो कर रही हैं बच्चियां, ते उन्हां वास्ते तुसी की कहना चाहोगे? फिर उन्हां वास्ते भी वैक्सीनेशन दा टाइम पीरियड ओही रहेगा या बदलेगा?
0: हाँ, वही वैक्सीनेशन का टाइम है कि ये वैक्सीन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये वैक्सीन 9 साल के बाद हर बेटी और बेटों को लगानी चाहिए वैक्सीन, आप सबको। और जो ये गलत फहमी और गलत बात फैल रही है कि ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, कुछ गलत कट्टरपंथी लोग हैं जो ये फैला रहे, ये गलत है। एज डॉक्टर मैं ये कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर किसी कैंसर से बचाव हो सकता है तो जरूर ये टीका लगाना चाहिए, है ना। तो ये 9 साल से लेके 15 साल में 2 डोज है और 15 से 45 साल तक में 3 डोज लगाई जाती हैं
1: जी। ते अगला सवाल यही भी, जिन्हां ये वैक्सीनेशन ऑलरेडी लग चुकी है उन्हां नू दोबारा इस वैक्सीनेशन दी लोड़ पैंदी है या नहीं पैंदी?
0: नहीं, ये जो अगर आपने पूरा टीकाकरण का डोज किया हुआ है तो इसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, यानी कि पूरी लाइफ इसके इससे बचाव है। लेकिन एक जो बहुत जरूरी बात है, अगर वैक्सीन लगाई है फिर भी आपको पैप स्मियर टेस्ट कराना पड़ेगा
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने टीका लगाया है तो आप पैप्स टेस्ट, जो कि सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट है, उसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो टीका है वो सिर्फ कुछ वायरसेस के अगेंस्ट है
1: जी।
0: तो हमें फिर भी अपना चेकअप कराना चाहिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, चाहे हमने टीका लगाया ही हुआ हो
1: जी। ते अगला सवाल है कि मैडम, जे ऑलरेडी परिवार दे विच किसे नू कैंसर रहा होवे ता फिर जड़ी उदी आने वाली जनरेशन पीढ़ियां ने उन्हां नू केड़ियां गल्लां दा खास ध्यान, भी खान पीन दा या होर भी जेनेटिक कोई चीजां दा ही लोड़ पैंदी है, भी ध्यान रखना चाहिए है?
0: अगर देखो जो फैमिलियल कैंसर यानी जेनेटिक कैंसर परिवार में रन करते कैंसर है, इनकी कुछ एक अलग टाइप की वैरायटी होती है। जैसे ये या तो यंग लोगों में पाए जाते हैं, जैसे कि माँ को 40-35 साल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, नहीं तो बच्चेदानी का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर 45 साल के बाद ही कॉमनली पाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी जवान में 40 साल के अंदर में अगर बच्चेदानी का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या फिर अंडेदानी का कैंसर होता है तो हम जरूर जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ मिलता है या किसी को हिस्ट्री है तो फिर जरूर उनके घर वालों में भी ये स्क्रीनिंग करी जा सकती है
1: जी। ते मैम फिर असी वक्खो वक्ख कैंसर दी गल कीती है, तो फिर इन्हां कैंसर दा इलाज केड़े-केड़े तरीके नाल कीता जांदा है?
0: हाँ, तो जैसे हमने बात की कि पहले कैंसर पकड़ में आना चाहिए, उसके लिए सारे मरीजों को या सारे

0: जो है
1: पेशेंट्स को।
0: पेशेंट्स को हमें सतर्क रहना चाहिए, कोई भी अर्ली सिम्टम यानी कि कोई भी सिम्टम है उसको अनदेखा ना करके हॉस्पिटल जाके चेकअप जरूर कराना चाहिए। एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमने बताया कि एक जैसे छाती में सेल्फ स्वयं जांच जरूर होनी चाहिए। एक सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के लिए पैप्समियर और HPV DNA टेस्ट कराएं, और बच्चेदानी के कैंसर सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीन यानी कि जो अभी टीका आया है वो भी जरूर लगवाइए। तो इसके अलावा
1: जी, ते अगला सवाल यही कि कोई भी कैंसर है उन्हें शुरुआती पड़ा या नहीं पहले पड़ा दे विच जे पूरा इलाज मिल जाए तो कि अगे नहीं फैलता।
0: हाँ, तो जैसे कि अगर कैंसर की आपने अगर कैंसर के साथ पेशेंट आता है
1: जी,
0: तो उसका जो भी इलाज है वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में है
1: जी।
0: स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है। स्टेज 1 का मतलब है कि वो कैंसर जहाँ पे भी है, अगर छाती में है या बच्चेदानी में है तो वो उसके अंदर ही है, वो अभी बाहर नहीं फैला
1: जी।
0: और जैसे अगर पित्ते का कैंसर है या जहाँ का भी है तो वो शायद उसके अंदर ही है, वो नहीं फैला। तो स्टेज 1 में पेशेंट के बचने के चांस लॉन्ग टर्म सबसे बेस्ट रहते हैं क्योंकि वो बीमारी जल्दी पकड़ में आई है। तो उसमें कई बार ऑपरेशन का भी सहारा होता है या फिर बाकी अगर कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में होता है यानी कि वो उस ऑर्गन से यानी कि उस अंग से बाहर निकल चुका है
1: जी,
0: है ना, शरीर में और जगह फैल गया है, जैसे
1: जी,
0: अंतड़ियों में फैल गया है या फिर छाती में फैल गया है या बोन में या फिर ब्रेन में फैल गया है या जिगर में फैल गया है। तो अगर ये फैल जाता है स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर तो इसमें कीमोथेरेपी यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू या फिर रेडिएशन थेरेपी रेडियोथेरेपी के थ्रू इलाज होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट को कीमो या रेडियो लगेगा, सिक्के लगेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन स्टेज, आपकी कौन सी स्टेज है उस हिसाब से इलाज होगा।
2: हर औरत दी सेहत, हर परिवार दी खुशहाली दी नी हुंदी है। जे तुसी गर्भ अवस्था दी देखभाल, महावारियां दी समस्यावां, बांझपन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या किसी भी गायनोकोलॉजी संबंधी समस्या दा हल लभ रहे हो तां आओ कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बठिंडा। इथे महिलावां दी सेहत लई तजर्बेकार गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता रावत उपलब्ध हन। अज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो अते माहिर डॉक्टरी सलाह नाल अपनी सेहत नूं दिओ सही देखभाल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हर कदम ते तुहाडी सेहत दा भरोसेमंद साथी। फोन करो 7431000 एंड 0164512200। हर औरत दी सेहत, हर परिवार दी खुशहाली दी नी हुंदी है। जे तुसी गर्भ अवस्था दी देखभाल, महावारियां दी समस्यावां, बांझपन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या किसी भी गायनोकोलॉजी संबंधी समस्या दा हल लभ रहे हो तां आओ कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बठिंडा। इथे महिलावां दी सेहत लई तजर्बेकार गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता रावत उपलब्ध हन। अज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो अते माहिर डॉक्टरी सलाह नाल अपनी सेहत नूं दिओ सही देखभाल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हर कदम ते तुहाडी सेहत दा भरोसेमंद साथी। फोन करो 7431000 एंड 0164512200।
1: जी, असी गल कर रहे हां औरतां च होण वाले कैंसर बारे। तां मैं जे कैंसर नाल जुड़े जिहड़े लोकां विच आम गलत केड़ियां धारणावां हुंदियां ने कि इह हो गया तां सानूं सही इलाज, या तुसीं उहनां गलत धारणावां वाले की कहना चाहोगे?
0: देखो, जैसे मैं कैंसर पेशेंट से जब भी डील करती हूं या जो भी पेशेंट आता है तो उसमें पेशेंट कहता है कि मैडम हम देसी इलाज करवाना चाहते हैं, हमें बताया गया कि देसी इलाज करो, यानी कि वो अपने जो मेन इलाज है उससे भटक जाते हैं। तो देसी इलाज का रोल है जैसे नेचुरोपैथी या फिर हेल्थ का, लेकिन जो आपके डॉक्टर ने अगर आपको बताया गया कि ऑपरेशन होना है या सेके लगने हैं या फिर कीमोथेरेपी, आप उसको ना छोड़िए, आप देसी इलाज को भी लेते रहिए और साथ में आप उसको भी ले सकते हैं। बट लेकिन सेकेंड ये जो सेकेंड आम धारणा जो मिथ पाया जाता है वो ये है कि हम पीस टेस्ट नहीं कराएंगे, अगर सुई लग गई तो कैंसर फैल जाएगा। ये भी पेशेंट बहुत कॉमनली बोलते हैं, ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। इनफैक्ट कई बार कैंसर का इलाज ही बायोप्सी से शुरू होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर अगर होता है तो हम पीस टेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही उसका इलाज ऑपरेशन होना है या सिक्के लगने या कीमोथेरेपी शुरू होता है। तो ये कहा जाता है कि ये एक बिल्कुल गलत धारणा है कि पीस लेने से फैल जाएगा।
1: जी, ती खोज श्रोता साडे नाल टेलीफोन लाइन ते ने कर दे उहनां नाल गल। हैलो,
3: हैलो, सत श्री अकाल मैम।
1: सत श्री अकाल जी।

0: मैडम जवाब देंगी, तुसी पूछो।
1: हाँ जी, सत श्री अकाल
2: मैम। हाँ जी मैम, ब्लीडिंग बहुत आंदी थी मतलब कि मैरिज तो पहला।
1: थोड़ी उम्र कितनी है?
2: 28 साल है मैम।
1: हाँ जी
2: हाँ जी, उस तो बाद मेरे को बेटी हुई मैम, सर्जेरियन तो बाद मतलब कि फिर 1.5 साल बाद मतलब कि लगातार आंदी है।
1: लगातार आंदी है मतलब?
2: मतलब कि मैडम मतलब कि हुण मेडिसिन चल रही थी, उन्होंने डॉक्टर ने माना दी मेडिसिन दसी सी
1: हाँ जी हाँ जी
2: सही हो जाओगे।
1: हाँ जी हाँ, देखो
2: एक महीना आई थी मैडम
1: हाँ जी,
2: तो बाद।
1: चलो मैं आपको एक गुड न्यूज तो ये दूंगी कि 28 साल में ये कैंसर नहीं होता है। तो एक जो अच्छी बात है वो आपके लिए ये है कि ना तो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर ना बच्चेदानी का कैंसर 28 साल पे यूजुअली नहीं पाया जाता है। 1000 में से कोई एक पेशेंट होगा तो वो रेयर है ना। और ये कई बार ऑपरेशन, जैसे आप कह रहे हो ऑपरेशन से हुआ, तो कई बार हॉर्मोन्स की बढ़ाव चढ़ाव की वजह से।
2: मैरिज तो पहला भी मैंने प्रॉब्लम थी
1: पीसीओडी की। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसके लिए ये कैंसर की वजह से नहीं है। तो आप उसके लिए जैसे मालाडी की गोली से अगर सही रहता तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
2: ओके ओके मैम।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, शुक्रिया। तो मैम जल्दी तुसी संगी पैना नू की संदेश देना चाहूंगी?
1: मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे हमारी जो महिलाएं हैं है ना, हम अपनी सेहत को सबसे पीछे रखते हैं और घर के सारे काम है, ऑफिस के कामों में ज्यादा लगे रहते हैं। तो सबसे हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि सेहत ही हमारा धन है, है ना। क्योंकि आप सही रहेंगे तो परिवार में बच्चों का भी ध्यान रख पाएंगे, अपने घर वालों का भी ध्यान रख पाएंगे। तो कभी भी प्रॉब्लम आती है, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सबसे पहले हॉस्पिटल जाके चेकअप के लिए जरूर आएं। और दूसरी सबसे जरूरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये वैक्सीन आई है HPV वैक्सीन, यानी कि सर्वाइकल कैंसर की जो टीका आया है, ये तुसी अपने बच्चों को जरूर लगवाएं। ये क्योंकि इस साल से ही भारत सरकार ने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लाए जो कि 14 साल तक में लग सकता है। क्योंकि अगर आपने बच्चों को ये लगा दिया तो वो उनको सर्वाइकल कैंसर या फिर लड़कों को भी जो और एनल कैंसर पेनाइल कैंसर नहीं होगा, तो जरूर ये टीका लगवाएं।
3: प्रोग्राम कर परिवार
4: श्रद्धांजलि भेट की जिन्होंने नीट पेपर लीक तो बाद हाल ही हुए विरोध प्रदर्शन दौरान अपनी जाना गुवा दित्तियां सन। सत्कार वजो विछड़िया रूहां की याद विच 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जिवें ही इजलास 12 बजे प्रश्नकाल नाल मुड़ शुरू होया तो स्पीकर ने लगभग 20 मिनट के कामकाज तो बाद इस नूं दोबारा 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिता, क्योंकि विरोधी धिर कांग्रेस फरीदकोट पेपर लीक के मुद्दे से सिख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस के अस्तीफे की मंग ते नारेबाजी कर रही थी। हुण इजलास की कार्रवाई जारी है। पंजाब ने वोटर सूचिया की चल रही विशेष तीबर सोध SIR 2026 तहत सारे 117 विधानसभा हल्कों च घर घर जाके गणना गेट दौरान गणना फार्मा का 100% डिजिटाइजेशन का काम मुकम्मल कर लिया। मुख चोण अधिकारी आनंदता मित्रा ने कहा कि यह विशाल कार्ज 3 अगस्त की आखिरी तरीक तो एक दिन पहला पूरा किया गया। उन्होंने जिला चोण अधिकारियों ब्लॉक पद्धर के अधिकारियों से सारे विधानसभा हल्कों के समुचे चोण मशीनरी के उपरालों की शलाघा की कहा कि उन्होंने समर्पण को दर्शाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार की युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम उदों तक जारी रहेगी जदों तक सूबे च नशा का जड़ों खत्म नहीं हो जाते। उन्होंने ऐलान किया कि युद्ध नशा विरुद्ध की शानदार सफलता लोगों की सरगर्म भागीदारी संभव हुई है। कल लुधियाना विखे विलेज डिफेंस कमेटियां के वलंटियर्स नाल मुलाकात दौरान मुख्यमंत्री ने दसिया कि इस मुहिम के 500 दिन पूरे हो गए हैं, जिस दौरान 70,000 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 13,000 पिंड 1,25,000 वलंटियर्स इस अंदोलन की रीढ़ बन के उभरे ने। इस दौरान पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पिंड रक्षा कमेटियां नूं संबोधन करदिया युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत हुण तक दे वेरवे सांझे कीते।
5: पंजाब पुलिस ने 54,000 तों वध FIR दर्ज कीतिया है, 71,000 तों वध गिरफ्तारियां हुई है। साडी जिहड़ी रिकवरी हैगी उह रिकॉर्ड सीजर्स होए पंजाब दे विच, 3,433 किलो हीरोइन रिकवर हुई है, 41,000 किलो पॉपी हस्क, 60 लाख तों वध टैबलेट्स ते 22 करोड़ ड्रग मनी जिहड़ा रिकवर होया। इस तों अलावा ड्रग मनी तों जिहड़ी प्रॉपर्टी बनाई गई हैगी उसकी फ्रीजिंग दे पंजाब देश दा नंबर एक सूबा हैगा। पिछले एक सालां दे विच 835 प्रॉपर्टियां फ्रीज कराई गई जिसकी टोटल कीमत 322 करोड़ है। साडी कन्विक्शन रेट 90% तो उपर है। सारे

जिस रोते हो श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज दा अगला अंक जेड़ा की तुसी सुन सकोगे मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।

वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ताफे सुनना ना भूलना, मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।

0: हेलो भैन जी, सत श्री अकाल
1: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: जी। मैं तपा मंडी शमशेर सिंह हांस बोल रहा जी। धन्यवाद
1: जी, प्रोग्राम विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है
0: जी, तुहाडा
1: जी।
0: भी। गीत
1: हाँ जी, ते अज केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो?
0: है जी फिल्म गोरा और काला दा जी, गायक
1: हाँ जी
0: लता मंगेशकर और मुकेश दा जी। गीत ये बोले धीरे धीरे बोल कुछ सुना ले जी।
1: ठीक है जी। तुहाडी फरमाइश ते तुहानू सुना रहे हैं तुहाडी पसंद दा गीत, ते प्रोग्राम विच कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद है।
1: जी।

0: Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in. The Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in three assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की तीन सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे? आप

0: सोचिएगा इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
3: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
4: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने

0: आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजिज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

0: ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कु कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 2:30 ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

जी स्रोते हो श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज दा अगला अंक जेड़ा की तुसी सुन सकोगे मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।

वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।

जी, ऐसे गीत दी फरमाइश दे लई सानू व्हाट्सएप मैसेज आए ने। शीतला माता मंदिर वाली गली आर्या नगर गली नंबर 2 बठिंडा तो सरदार मलकीत सिंह कुड़ियाणा, मनजीत कौर बठिंडा, दीपिंदर सिंह चेयरमैन ते पोता गुरशब्द सिंह ते इन्हां दा समूह बराड परिवार। ते अगला मैसेज सानू जो आया है पिंड ढिल्लमां जिला बरनाला तहसील तपा मंडी तो लिखण वाले ने प्रगट सिंह ढिल्लों, जथेदार प्यारा सिंह कोटशमीर, जनक राज कोटशमीर, नछत्र सिंह लालबाई, दर्शन सिंह पथराला, बलदेव सिंह भुख्या वाली, सुखदेव सिंह गिल ते गुरमीत सिंह लैपो ते उपरकोट महला चौधरी चुखंटी बुलंदशहर तो मुहम्मद सैयद अबासी, निगहत परवीन अबासी, शहानाबाज अबासी, सरफराज अबासी, फरदीन अबासी, सुहान अबासी, अरजान अबासी, अबान अबासी ते इन्हां दा अबासी परिवार। पिंड बुरज सिद्धवा नज़दीक मलोट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज सिंह सिद्धू, जंगीर सिंह भुल्लर डब वाली ढाब तो रुलदू सिंह पिंड करमगढ़ ढाणी तो ते मलोट पिंड तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, अमनदीप गिल ते गैवी गिल ते इन्हां दे आंढी गवांढी। ते कालियावाली तो हरदेव सिंह, जस्सा सिंह ते गेट वाली गली मौड मंडी तो चरणजीत जसल ते अर्शवीर जसल ते इन्हां दी पसंद ते सुना रहे हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुनहली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है, तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जब आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है,
1: जी
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे,
1: हाँ
2: वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है, हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर
2: वो
1: भेज
2: भी
1: रहे हैं, और
2: लिखा है।
1: पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में,
2: जी
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे
2: बिल्कुल।
1: हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही है, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना?
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित का हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु

0: मैं बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं,
0: हाँ
1: और इस दूध में जो जैसा आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड। और
0: हाँ
1: ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, एक नवजात शिशु के लिए।
0: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही
1: ये भी
0: बता
1: हम
0: रही हैं।
1: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
0: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलोस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
1: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में उस खतरा हो सकता है
0: हाँ
1: उसको कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है,
0: बिल्कुल
1: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो
0: हाँ
1: जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: कुपोषण
1: उस परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों, इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
0: तो चलिए अब ये सुन लेते हैं।
2: इतने बड़े जहां में दिल तुझको

इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा

0: कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ,
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल सही।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे
0: हाँ,
1: सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है, और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना कि उसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे ना केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं, तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, जिससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल, कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है, ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
4: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय

0: पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। आठवें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की इस सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
1: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
2: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
1: अब हम उसे कटवा लेना।
2: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
0: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर चार पांच आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
2: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
0: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
1: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
2: जी,
1: ये क्या बात है?
2: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
1: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
2: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
1: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
0: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
2: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
1: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
2: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
0: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं, और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
1: क्या बात है मनोहर सिंह?
2: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
1: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
0: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो तीन तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
2: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा

0: तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया। ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
1: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
2: क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
0: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
2: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं। अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
3: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर शिवपाल सिंह से बोला,
1: ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
3: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
4: ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
3: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
0: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
5: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
6: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
7: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल?
6: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
7: बिल्कुल।
6: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति

0: पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
1: विषय
0: वाला
1: है
0: है।
1: वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन, क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
0: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
1: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी,
0: क्या क्या सीखा,
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी है।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए। तो हमारे

0: जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है, कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा,
1: सही बात
0: कई
1: है,
0: बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को
1: जी
0: लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है, यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल,
0: ये
1: है
0: तो आप
1: ना?
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भाई जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल। टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें, और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया, या इसका
0: हाँ
1: आनंद होता क्या है,
0: बिल्कुल
1: ये भी
0: होता है,
1: कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे, दुकान पे ले जाएं जहाँ पे
0: हाँ
1: इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसे खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छूमंतर, और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल। और जब नया सीखते हैं तो देखो, खुशी की एक बात ही अलग होती है। वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें। सुनने में अजीब जरूर
0: हाँ
1: लगेगा, लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक
0: हाँ
1: टाइम
0: हाँ
1: वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता ये है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: इंसान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
2: बिल्कुल।
1: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
2: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
1: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
2: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
1: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
2: चलिए।
1: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ।

0: इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगी, और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है उनको
1: उन्हें भी
0: भी।
1: खुशी होगी, और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका
0: जी
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है, और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है। प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है। लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए।
1: जी
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे।

0: आज के मेहमान
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
4: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का, तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉइड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉइड फोन, और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई, जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है
3: जी।
4: तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
3: बिल्कुल,
4: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
3: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
4: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
3: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
4: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी जरूरत के अनुसार आप इन चीजों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची यानी कुरकुरी चीजें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूंगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं, और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
3: उसका जो मसाला है जी
4: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही
1: वही, हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को भेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, मेरे हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा,
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात है,
3: शुक्रिया एक बार और
2: डॉक्टर साहब। ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
3: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
2: जी,
3: उसके पीछे जो रहता है, जो अपनी पुतली रहती है, जो आप काला ब्राउन ब्लू जो भी दिखते हैं उसके पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
2: जी,
3: उसके बाद पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
2: जी।
3: अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
2: जी,
3: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
2: जी,
3: जब तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है।
2: जी जी।
3: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
2: जी।
3: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं।
2: अच्छा।
3: जो पैदाशी होता है बहुत कम रहता है लेकिन होता है, ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
2: जी।
3: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके,
2: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
3: जांच में पता
2: हो रहा है।
3: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40-45-50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
2: इसकी क्या वजह हो सकती है?
3: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक
2: अच्छा
3: जो आए हमारे आंख के सामने, जो पहले

0: ही था। ये जो आए हैं मेरे हिसाब से तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार
1: जी
0: लग जाए किसी को,
1: जी
0: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा,
1: जी
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो साल 2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक चीज जो होती है, जो यहां पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल लेंस, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
1: अच्छा
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी
0: इन
1: जिंदगी
0: नाइनटी
1: चलता
0: नाइन 100% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी
1: जी
0: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से, कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए, बट शी इज ओके,
1: जी
0: शी इज नाइनटी
1: तो
0: वन
1: इतना
0: ईयर्स ऑफ एज,
1: लंबा वो
0: इतना
1: लेंस
0: अरसा
1: चलता
0: हो
1: है।
0: गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था, ये
1: अच्छा,
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे,
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम
1: जी
0: दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की खिड़की में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन हो मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर उसको
1: जी
0: तोड़
1: जी
0: के
1: तो उसका
0: निकाल
1: असर
0: के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूं आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह, हम
1: जी
0: सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हो, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर
1: बिल्कुल
0: मोतिया हो और आपकी आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है,
1: जी
0: ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू।

0: जी
1: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको
0: बिल्कुल
1: दृष्टि देने के लिए,
0: करेक्ट
1: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
0: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता, और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
1: देखिए जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है,
0: जी
1: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है, क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
0: जी
1: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
0: बिल्कुल
1: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल
1: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया,
0: जी
1: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहाँ गिरेगा, आंख में जगह कहाँ है,
0: बिल्कुल
1: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
0: जी
1: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा, आंख का इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले ही कहा अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सहलेगा,
0: जी
1: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
0: जी
1: तो
0: जी
1: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं, और वो है नेत्रदान।
1: जी
0: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
1: जी
0: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं, और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
1: जी बहुत जरूरी है,
0: जी
1: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
0: जी जी
1: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है, तो एक किसको फायदा होगा,
0: जी
1: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं, और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है वो ऑपरेशन करके। काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें, वो आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है, अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना आंख
0: जी जी
1: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई, तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है,
0: जी
1: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
0: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था, कि
1: जी
0: ये एक छोटा सा कदम किस
1: जी
0: तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते, और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
1: सही
0: लोग
1: है,
0: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
1: नहीं बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
0: जी
1: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा, अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना,
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
0: जी
1: दिक्कत होती है
0: जी तो
1: उनके
0: इससे
1: लिए भी।
0: बहुत

0: लोगों की मदद हो सकती है।
1: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
0: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
1: जी
0: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
1: ये नॉर्मल है। आई
0: जी
1: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
0: जी
1: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है। क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था, विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं।
0: जी
1: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है, वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम यह है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
0: जी
1: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
0: जी
1: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह है, तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
0: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
1: बहुत
0: है।
1: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में
0: जी
1: तो स्पेशली जो भी, लेट्स से, जहां पे ये फैक्ट्रियां
0: फैक्ट्रियां हैं।
1: हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके
0: जी
1: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
0: जी
1: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं हजार टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन वो
0: बिल्कुल
1: हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
0: खुद
1: ग्लास
0: नहीं
1: यूज
0: कर
1: करो।
0: सकते
1: और
0: लोग।
1: एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते, कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं, कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा, वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
1: ज्यादातर
0: जी।
1: उसकी आंखों में उड़ता है,
0: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
1: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
0: जी
1: लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये
0: ये
1: कंसेप्ट
0: छोटे
1: बहुत
0: बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहां कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
1: आंखों
0: पर?
1: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
0: जी
1: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहा है। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
0: जी
1: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
1: जी
0: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
1: खतरनाक
0: जो
1: नहीं है,
0: लोग,
1: फैशन है, उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो,
0: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं?
1: ना ना ना ना, नो नो नो, नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
0: जी
1: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
0: जी
1: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। आप
0: अच्छा
1: टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है,
0: जी
1: वो
0: जी
1: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है,
0: हाँ
1: कहीं
0: वो
1: गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
0: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
1: हाँ काफी टाइम होता है, काफी
0: जी
1: टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
0: जी
1: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
0: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
1: लेना
0: बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है, बहुत
0: जी
1: जरूरी है,
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं आंखों
1: जरूर
0: से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात
1: जरूर।
0: करते हैं।

0: साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना,
0: जी
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन आ
0: जी
1: रही है,
0: जी
1: आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है
0: हाँ
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है।
1: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है
1: सबसे
0: उसका भी
1: ज्यादा
0: आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा
0: ओहो
1: सबसे ज्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए,
0: ओहो
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है,
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आंख को साफ कर रहा है। तो
0: जी
1: जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: चीपे।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है, क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
0: तो
1: है,
0: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी
0: ऊपर।
1: भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं, क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए। तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख
0: जी
1: को पानी
0: जी
1: मारने में, आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं,

0: शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने अरे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
1: जी
0: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
1: दिन में नहीं
0: दिन
1: निकलती
0: में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना, अब धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होने चाहिए।
1: जी
0: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
1: हाँ
0: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी,
1: ओके
0: जितना
1: हाँ
0: हो दवाई अवॉइड कीजिए, जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट नहीं, आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं हम, नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
1: जी
0: लेने के देने पड़ जाएंगे,
1: तुरंत डॉक्टर के पास
0: तुरंत
1: जाइए।
0: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
1: हाँ
0: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर
1: जी
0: आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे वो बहुत जलता था,
1: जी जी
0: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे थे
1: हाँ
0: तभी,
1: लड़कों को
0: हाँ
1: भी
0: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और
1: लड़कों
0: बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी
1: जी
0: सेफ है लेडीज के
1: जी
0: लिए,
1: जी
0: जो बाहर से लगते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
1: यस
0: वहां पे लगा दी, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए,
1: हाँ
0: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए।
1: जी
0: हाँ भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को,
1: जी
0: सोचिए आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं
1: नहीं
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट
0: सबसे
1: है
0: नाजुक चीज है, बहुत
1: जी
0: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते,
1: जी
0: हाँ आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता, वेरी
1: जी
0: सिंपल,
1: जी
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी,
1: और
0: और
1: ये
0: मुझसे
1: हमें
0: कहा
1: पता नहीं
0: गया है
1: था कि ये
0: कि
1: खतरनाक।
0: योग में ये करते हैं, मैंने आई
1: हाँ
0: टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है आंख
1: जी
0: बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है, आप
1: हाँ
0: रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है,
1: लेकिन
0: समझे?
1: खुली आंखों के ऊपर
0: खुली
1: छींटे नहीं
0: आंखों
1: मारने।
0: की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं, जब आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है,
1: जी
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, कांदा तो वही रखता नहीं है, ठंडी
1: सही
0: वाली
1: है
0: रखेंगे,
1: सही है
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
1: जी
0: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं आप, बर्फ लगाते हैं ना,
1: जी
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं वहां पे, हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया,
1: तो
0: आप
1: कुछ
0: गिर
1: काम का
0: गए तो
1: लगा
0: पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना,
1: जी
0: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हम कम करना चाहते हैं, सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है,
1: जी
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है, इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है,
1: बिल्कुल क्योंकि वो पानी का
0: सेम
1: असर
0: पानी,
1: है
0: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट,
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं,
0: जरूर,
1: खामोशी फिल्म का गाना। हमने
0: हाँ,
1: देखी है इन आंखों की
0: अरे
1: महकती
0: वाह
1: खुशबू, गुलजार साहब का गाना
0: जी।
1: है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है, ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी।
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोस भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था,
0: जी
1: जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके।
1: तो

0: वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
1: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और
0: हाँ,
1: उसकी बात करनी जरूरी
0: वो
1: है
0: बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है,
1: जी।
0: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड
1: जी
0: डायबिटीज
1: जी
0: का।
1: जी जी
0: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो
1: जी
0: ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतियाजल दिया आ सकता है, ग्लोकोमा, कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं,
1: जी
0: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
1: जी जी
0: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
1: बिल्कुल
0: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं, जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
1: जी
0: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
1: ऑफ कोर्स
0: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है, तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है, ये इंसुलिन करता है, जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं, इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज के वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी,
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के
1: जी
0: दौरान।
1: जी जी
0: अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे
1: जी
0: हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया,
1: जी
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है,
1: जी
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी, आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है, हाई
1: जी
0: डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है, तो क्या, नहीं, नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है,
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वॉज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है,
1: जी
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी वे हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है,
1: जी
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारण ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में, किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट

0: करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो
1: तो
0: लीकेज
1: ब्लड
0: किस
1: निकल
0: चीज
1: आएगा।
0: का, ब्लड निकल आता है, तो
1: जी
0: ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है, वरना हमको सारी खुश में अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वहां के कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी,
1: बिल्कुल
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल

0: तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी,
1: बिल्कुल
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए, जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर, ऑपरेशंस, इंजेक्शंस, ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है, आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है,
1: जी
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300, 350 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो, लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो, और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर।
1: जी
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है, आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है।
1: जी
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, ये चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है।
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है।
1: जी
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं, तो ये क्योर नहीं होती,
1: जी
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम।
1: जी
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं, और हम सोचते हैं कि आई यार, ये 1 साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना।
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं,
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
0: जी
1: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते, फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है।
1: जी
0: डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है, अगर ब्लड प्रेशर सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है, देखिए आंखों को बहुत ही बचाया गया है, देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी।
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता, तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रेस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। ये
0: जी
1: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो आपको दिखाई
0: तो
1: देंगे, सभी
0: दिखाई
1: में
0: में
1: है।
0: जी।
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जेली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है, क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा वो आंख का हिस्सा नहीं, हो आंखें वहां पे चिपका हुआ है, तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम वहां से वो सटक भी सकता है, जिसको
0: ओके,
1: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं।
0: ये प्रेशर की वजह से होता है।
1: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है,
0: अच्छा
1: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
0: जी
1: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी
0: जी
1: स्पॉन्टेनियस हो सकती है
0: जी
1: अनफॉर्चुनेटली,
0: जी जी
1: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो तो क्या होने वाला है, वो
0: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
1: जान ही
0: शुरू
1: नहीं
0: हो जाएगा।
1: आएगा ना, उसमें
0: जी
1: जान निकल
0: जी
1: जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिसमें
1: ये
0: ऐसा होता
1: डायबिटिक
0: है?
1: रेटिनोपैथी में होता है एक,
0: जी
1: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
0: ये क्या होता है?
1: सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको
0: जी
1: और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं
0: जी
1: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके
0: जी
1: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
0: अच्छा
1: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झड़ने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है, तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं,

0: लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको ओसीटी कहते हैं, इट्स लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके
0: ये
1: लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है,
1: अच्छा
0: और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है। तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी, अनफॉर्चुनेटली। ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कई तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है। लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में
1: उसमें हो नहीं
0: देखिए
1: सकता।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी।
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीजों में, आप भी जानते
1: बिल्कुल
0: हैं, वेदर
1: बिल्कुल
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी
1: जी।
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है।
0: आप जानते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: वापस जाइए, वापस 8th 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस
0: वर्चुअल
1: बिल्कुल
0: इमेज है, अरे
1: हाँ,
0: वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब
1: सीधे
0: हम
1: होते
0: एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं। अच्छा, वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार।
1: कमाल
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी।
0: ये कर
1: यहां तक
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: जाता
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक, उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: है यस
0: क्योंकि
1: डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो
1: सेल्फ
0: जरूर डालिए।
1: मेडिकेशन इज
0: सेल्फ
1: डेंजरस।
0: मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ, देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी,
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू, दे आर मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें।
0: रिप्लेस कर रहे हैं, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता,
1: जी।
0: ओके। लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल ऑफकोर्स ऑफकोर्स, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: हाँ, बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए,
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अब

0: साथ देते हैं मरने तक, शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखे, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए। ये इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इम्पोर्टेंट है, फील भी इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें।
1: जी
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं। कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है,
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो
1: नो
0: शॉर्टकट्स इन लाइफ,
1: शॉर्टकट्स इन लाइफ। बहुत सही
0: ये
1: बॉटम
0: बहुत
1: लाइन
0: है।
1: है। बहुत
0: थैंक
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजा
0: यू।
1: अध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
0: नहीं,
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये, तो
1: जी
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: सेहतनामा,
1: अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तो हुण आप जी दे सनमुख दीपक मनमोहन सिंह दे मनमोहन खलूस दा काव चित्र सांझा करन लगे आ, जिस नूं चित्रिया अपनी कलम दे राही उकेरिया डॉक्टर आत्म सिंह हमराही जी ने। किस मिट्टी दा बनिया, किस मिट्टी दा बनिया हर धरती दे हर संकट विच, मां बोली सत्कारण दे लई वांग ढाल दे तणिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस धरती ते भाई भाई उस मिट्टी ने जणिया, उस मिट्टी ने जणिया। शेर मोहम्मद खान दा वतनी, शेर मोहम्मद खान दा वतनी उसरिया ओ अपने यतनी, गुट ते घड़ी, गुट ते घड़ी ते ना ही पत्नी, ना घर घाट ना पक्का डेरा, ना घर घाट ना पक्का

दोस्तों, डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह पंजाबी साहित्य भाषा अते आलोचना दे ओ चमकदे नाणे जिन्हां ने पंजाबी विचारधारा नूं नवीं दिशा दित्ती। ओ पंजाबी यूनिवर्सिटी अते पंजाब यूनिवर्सिटी दे अकादमिक मंचा नाल लंबे समय तक जुड़े रहे। उन्हां नूं पंजाब यूनिवर्सिटी वल्लों ऑनरेरी प्रोफेसर दा सन्मान भी

दोस्तों डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह पंजाबी साहित्य भाषा अते आलोचना दे ओ चमक दे नाने जिन्हां ने पंजाबी विचारधारा नू नवी दिशा दित्ती। ओ पंजाबी यूनिवर्सिटी अते पंजाब यूनिवर्सिटी दे अकादमिक मंचा नाल लंबे समय तक जुड़े रहे। उन्हां नू पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ऑनरेरी प्रोफेसर दा सन्मान भी प्राप्त होया। दोस्तों अज दे इस खास साहित्यिक प्रोग्राम विच असी गल करन जा रहे हां पंजाबी साहित्य दे उस विद्वान दी जिसने शब्दां नू केवल लिखिया नहीं सगो उन्हां विच रूह फूक दित्ती। एक कहानी है डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह जी दी, एक ऐसा नाम जो पंजाबी भाषा दे अध्ययन आलोचना अते चिंतन विच विशेष मकाम रखदा है। दोस्तों कुछ लोग किताबां नहीं लिखदे, कुछ लोग किताबां नहीं लिखदे, ओ अपनी रूह दे पन्ने खोलदे ने, ओ अपनी रूह दे पन्ने खोलदे ने ते जदों ओ बोलदे ने ते जदों ओ बोलदे ने वक्त भी अदब नाल खड़ा हो जांदा है, वक्त भी अदब नाल खड़ा हो जांदा है।

0: नहीं है भावों से,
1: जी
0: जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
1: जी
0: वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का
1: प्यार नहीं,
0: प्यार
1: नहीं। बहुत खूब जी, बहुत अच्छे असी लेक्चरर साहब, इन्हां दी एक होर बेहतरीन रचना जिहड़ी है यशोधरा, उस बारे भी जानना चाहुंदे आ, जिस दे विच इह एक औरत दे मनोभावां दी गल करदे है कि किस तरह उस दा पति उस नूं छड के चला जांदा है, जदकि उह चाहुंदी है कि उह जेकर मेरे नाल गल करदे जां मेरे तों पुछ के जांदे उह क्योंकि उह आत्मसात करन वास्ते जांदे है, ਤੇ ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
0: ਜੀ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਆਪਨੇ। ਗੁਪਤ ਜੀ ਕੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਮੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਔਰ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਖੀ ਵੇ ਮੁਝਸੇ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਤੇ
1: ਜੀ।
0: ਇਨਕੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਖੰਡ ਕਾਵਿ
1: ਜੀ,
0: ਉਸਮੇ ਸੇ ਲੀ ਗਈ ਹੈ
1: ਜੀ।
0: और इसका मनोभाव क्या है कि कवि जो है सिद्धार्थ गौतम की पत्नी,
1: हाँ जी,
0: यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त किया है इसमें
1: जी।
0: सिद्धार्थ संसार के दुखों के निवारण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए
1: जी,
0: अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को
1: जी
0: छोड़ जंगलों में चले जाते हैं
1: जी।
0: यशोधरा को लगता है कि उसके पति ने एक क्षत्रिय नारी की
1: जी
0: धीरता, त्याग और साहस को नहीं पहचाना
1: जी,
0: और उसे मोक्ष मार्ग का बाधक समझा और उसे अबला नारी समझा
1: जी।
0: जबकि यशोधरा एक क्षत्रिय नारी है
1: जी।
0: तो ये कविता उनकी नारी विषयक धारणा को व्यक्त करती है
1: जी।
0: तो मैं इस कविता की जो है पद आपको पढ़कर मैं सुनाता हूँ
1: जी। बिल्कुल।
0: सखी वे मुझसे कहकर जाते
1: जी,
0: कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते
1: जी,
0: सखी वे मुझसे
1: कहकर जाते जी,
0: मुझको बहुत उन्होंने माना, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना
1: जी,
0: मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते
1: जी,
0: सखी वे मुझसे कह कर जाते।
1: क्या बात है।
0: और इसलिए वो कहती थी एक बार मुझे बता कर जाते, मैं उनके रास्ता की, मैं उनके मोक्ष मार्ग की कभी बाधा
1: नहीं बनती,
0: ना बन
1: जी
0: नहीं बनती। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में
1: जी,
0: के श्रम को प्राणों के पन में,
1: वाह,
0: हम ही भेज देती हैं रण में
1: जी,
0: क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते
1: जी। बिल्कुल लेक्चरर साहब, असी यह फिल्मा दे विच भी वेखदे हां कि क्षत्री वीर राणियां महाराणियां जिहड़ियां ने वो अपने बच्चियां नू, अपने पति नू, अपने घर वालियां नू रण दे विच टिक्का करके मत्थे ते तिलक लगा के वह तोरदियां ने, ते इह गल उन्हां ने भी आखी ते बड़ी वधिया रचना जिहड़ी है वह, जिस दे विच औरत दे दिल दे भाव पेश कीते गए ने। इन्हां ने बहुत वधिया इह कीती रचना, ते असीं इन्हां बारे होर भी जानना चाहुंदे आ किहड़े वेले इन्हां नूं पुरस्कार प्राप्त हुंदा है, पद्म भूषण, अते इन्हां नूं राष्ट्रीय कवि दा दर्जा जिहड़ा है दित्ता जांदा है, इस बारे भी असीं थोड़ा जिहा जानना चाहुंदे।
0: भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है
1: जी,
0: 1954 में है
1: जी,
0: और 1960 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के
1: जी
0: 8वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे
1: जी,
0: और इनकी सारी रचनाएं
1: जी
0: जो है राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत है, देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत होने के कारण है
1: जी,
0: उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधन किया जाता है
1: जी। बहुत अच्छे लेक्चर साहब, असी हुण इह जानना चाहुंदे आ कि इन्हां दीआं कवितावां जिहड़ियां भी लिखियां गईआं अज दे परिपेख च, अज दे समें दे विच, असी उस नूं किवें अपने नाल जोड़ के वेख सकदे आ, किवें समाज नाल जोड़ के वेख सकदे।
0: देखो जी, चाहे इनकी रंग में भंग हो, चाहे वो भारत भारती हो
1: जी,
0: चाहे साकेत हो या जयद्रथ वध हो, सभी

0: रचनाएं वर्तमान युग पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं।
1: जी
0: आज भी देखिए सखी वह मुझसे कहकर जाते हैं, तो अभी ठीक है हमारे भारतीय समाज में नारी स्वतंत्र है, नारी सशक्तिकरण है,
1: जी
0: पर कहीं ना कहीं देखिए अभी पूरी आजादी नहीं मिली है।
1: जी
0: तो इसको व्याख्यायित किया। दूसरी बात, अगर राष्ट्र भावना से ओतप्रोत देखें तो अगर भारत के लोगों में आज राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होगी तो हमारा देश तरक्की और उन्नति नहीं कर सकता।
1: जी
0: तो आज भी इनकी राष्ट्र भावना की जितनी भी रचनाएं हैं उसको पढ़कर सभी में देश प्रेम की भावना पैदा होती है और राष्ट्र को के उत्थान की भावना विकसित होती है सभी में,
1: जी
0: जिससे हमारा भारत वर्ष पूरे विश्व में जो है दिन प्रतिदिन उन्नति और तरक्की की ओर जा रहा।
1: जी

0: वर्ष पूरे विश्व में जो है दिन प्रतिदिन उन्नति और तरक्की की ओर जा रहा।
1: जी लेक्चरर साहब, तुसी बड़ी बेहतरीन जानकारी दित्ती इन्हां बारे अते तुहाडे पासों इन्हां दीआं गल्लां सुण के इन्हां दीआं रचनावां दे नां सुण के असीं उम्मीद करदे हां साडे स्रोते एक बार जरूर इन्हां दीआं रचनावां पढ़नगे, खास तौर ते यशोधरा, साकेत अते तुसी भारत भारती रचनावां दी गल कीती, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी।
2: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ IAS ਅਤੇ PCS ਦੀ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਆਰੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ।
1: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਆਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਣੀ 'ਚ।
3: ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਬਠਿੰਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾ ਔਰ ਉਨਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪੇ ਯੁਵਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਐਂਕਰ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਰਜੌਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੇ ਲੀਏ, ਹਮਾਰੇ ਨਏ ਅਭਿਆਰਥੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ।
1: ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਹੈ ਕੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ IAS PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ?
3: ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਆ ਥਾ 2022 ਮੇਂ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਓ ਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਥੇ, 31 ਮੇਂ ਖੋਲੇ ਥੇ, ਉਸਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਦਾ ਮੇਂ, ਔਰ ਇਹ 2022 ਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ, ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। तो हर साल हम लोग और इसमें अलग अलग साल में अलग अलग MOU हमारे साइन हुए मिनिस्ट्री के ही अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो फिलहाल हमारे पास जो है 3 तरीके की पोजीशन अवेलेबल है इस सेंटर में, और 1 साल की कोचिंग होती है, लेकिन अभी जो सीटें निकली हुई है कुछ वैकेंट सीटें जो रह गई थी, लिमिटेड सीट्स हैं उनको निकाला है, और कुछ 100 सीटें हमारे पास विमुक्त जातियों के लिए भी हैं जिनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स या घुमंतु जातियां भी कहते हैं उनके लिए भी है, और इसमें हम UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवाते हैं 1 साल तक, और इसमें जो है भारत सरकार के ही तरफ से अलग अलग कैटेगरीज के लिए जैसा प्रोविजन है उनको जो है स्टाइपेंड भी मिलता है, और भारत सरकार ही बच्चों की फीस भी पे करती है।
1: सर, असी ये जानना चाहते हैं हुण जो नोटिफिकेशन आउट होया है तुहाडे कोले जिन्नियां सीटां ने उहदे लई कौन योग है, अते उस उम्मीदवार नू करना की होएगा, इस बारे सारी जानकारी सानू दे दियो, किथे फार्म भरना है, की हेल्पलाइन नंबर है, की वेबसाइट है, सर सारी जानकारी।
3: सबसे पहले तो सभी साथी नोट कर लें, हमारे जितने भी स्कॉलर या स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, कि आपको जाना कहाँ है, तो अगर आप सिंपली गूगल में भी जाके या सर्च इंजन में जाके अपने DACE डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो शॉर्ट फॉर्म है DACE, और उसके आगे अगर CUP सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का CUP भी अगर आप सर्च में डालते हैं तो आपको पहले ही ऊपर सर्च के रिजल्ट में आ जाएगा जो हमारा सेंटर का वेबसाइट है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दिखेगा वो खुल जाएगा, उसमें सेकंड टैब है एडमिशंस का, उसमें जाएंगे हमारे अभ्यर्थी तो आपको ये नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा और नीचे पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी। अब मैं आपको ब्रीफली थोड़ा डिटेल्स भी बता देता हूँ, इस वक्त हमारे पास 3 तरीके की सीटें अवेलेबल हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज की। तो पहली कैटेगरी जो हमारी है जैसा MOU साइन हुआ है उसके बेसिस पर भारत सरकार के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ SC एंड OBC के जो कैंडिडेट्स हैं वो कैटेगरी A में आएंगे, इसकी हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। जब मैं लिमिटेड कह रहा हूं तो वो उनका संख्या लगभग मोटा मोटा 30 के आसपास है, करीबन 30 सीटें SC और OBC कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं, और इसकी साथ इस कैटेगरी वालों को जो है अगर जो हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे बहुत जल्द ही, जब ये फॉर्म की लास्ट डेट चली जाएगी उसके कुछ ही दिनों के बाद, तो एंट्रेंस टेस्ट में मेरिट बेस्ड जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका नाम फिर मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, और उस बेसिस पर उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह मिनिस्ट्री जो है स्टाइपेंड देती है, यानी आप वजीफा कह सकते हैं। साथ ही साथ मिनिस्ट्री जो है बच्चों की जो भी कोच

0: की फीस है वो भी जो है बच्चों को देती है, और वो बाद में बच्चे यूनिवर्सिटी में लाके जमा कर देते हैं। स्टाइपेंड बच्चों का हो जाता है और फीस जो है वो बच्चे यहाँ लाकर जमा कर देते हैं। जब भी मिनिस्ट्री देती है तब करना होता है, बच्चों को अपनी जेब से कुछ नहीं देना। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं तो ये कैटेगरी बी है। इसमें 20 सीटें हमारे पास हैं जो हर किसी के लिए खुली हुई हैं। कोई
1: जी
0: भी अभ्यर्थी इसमें किसी भी कैटेगरी का हो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें क्लॉज यही है कि ये पेड सीट है,
1: ठीक
0: और
1: है जी
0: पेड पे भी हमने बहुत मिनिमम सा रखने की कोशिश की है। वो है 2,500 रुपए। अगर आप उसमें महीने का देखेंगे तो 2,500 रुपए महीना है, और लेकिन तीन तरीके से फीस भरी जा सकती है, या तो तिमाही या छमाही या फिर सालाना। तो
1: जी
0: तिमाही की फीस देखें तो 7,500 रुपये होती है, और इसमें कोई भी कैटेगरी जनरल से हो, अनरिजर्व से हो, SC OBC किसी भी कैटेगरी से इसमें भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों हमारे पास एक तीसरी सीट है जिसे हम कैटेगरी सी यहाँ पर मेंशन्ड है। इसमें जो विमुक्त जातियां हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डी नोटिफाइड या फिर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक,
1: जी
0: तो विमुक्त जातियां घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, इनकी भी अच्छी खासी जनसंख्या है। ये तीसरी कैटेगरी है, और इसमें मंदीप जी मतलब अच्छी बात यह है कि हमारे पास 100 सीटें हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि हमने पिछले साल भी ये सीट निकाली थी। इसमें हमारे पास फॉर्म्स बहुत कम आते हैं, एक दो या तीन फॉर्म ही आते हैं, और इस MOU को जो हमने साइन किया था भारत सरकार से, ये सीटें हम तभी रन कर सकते हैं जब मिनिमम हमारे पास 50 कैंडिडेट इस कैटेगरी में आ जाएं,
1: जी
0: अन्यथा हम इसको रन नहीं कर पाते हैं। तो ये सीटें लगातार खाली जा रही हैं। इसमें कोचिंग 9 महीने की है, और इसमें भी स्कॉलरशिप जो है अकॉर्डिंगली जैसा MOU साइन हुआ है उसके बेसिस पे होगी। तो ये तीन तरीके की सीटें हैं साथियों। लास्ट डेट इसकी मैं आपको बता दूं, उसके बाद एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा। 9 अगस्त रविवार, 9 अगस्त 2026 दिन रविवार इसकी लास्ट डेट है
1: जी
0: फॉर्म अप्लाई करने की। यहीं से आपको जब आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे जो मैंने पहले बताया था, आप गूगल पे जो है या किसी भी सर्च इंजन पे जाके डेस CUP लिखेंगे स्पेस देकर, तो आपको हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है 2025-26 सेकेंड राउंड।
1: जी बहुत अच्छे सर, तुसी सानू स्टाफ बारे, क्लास दी टाइमिंग बारे अते होर सुविधावां बारे दस दियो सर, रहन सहन दी।
0: रहने की सुविधा फिलहाल हमारे पास नहीं है मंदीप जी, तो बच्चों को अपने से मैनेज करना होता है, या हमारे
1: जी
0: बच्चे अभी डेली कम्यूट करते हैं
1: ठीक है
0: या फिर वो बाहर अपना किराए वगैरह पे लेके रहते हैं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल अंडर कंस्ट्रक्शन है।
1: जी
0: तो बहुत जल्दी मुझे लगता है इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये हॉस्टल्स बन जाएंगे, उसके बाद हम अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर और ये हॉस्टल की सुविधा भी बच्चों को अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा स्टाफ हमारे पास फिलहाल इस सेंटर में हमारे पास 7 फैकल्टी मेंबर हैं,
1: जी
0: क्योंकि UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आप डोमेन देखेंगे तो बहुत वाइडर डोमेन है।
1: हाँ
0: उसके
1: जी
0: लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड 7 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अलग अलग अपना डोमेन को पढ़ाते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड मेजरमेंट के चीजें हो गई, उसके बाद क्वालिटेटिव या इंग्लिश के लिए एक टीचर है,
1: जी
0: ज्योग्राफी के लिए है, हिस्ट्री के लिए है, सोशियोलॉजी के लिए है, तो इस तरीके से वाइडर एरिया कवर किया जाता है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे ने 10+2 किया हो, 50% मिनिमम मार्क्स हो,
1: जी
0: ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, वो बच्चा या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हो या फिर ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हो, BA के तीसरे साल में हो, BSc के तीसरे साल में हो, BCom के तीसरे, जो दूसरे साल में या पहले साल में वो नहीं अप्लाई कर सकते।
1: जी
0: एज लिमिट की बात करें तो जो लास्ट डेट है हमारी 9 अगस्त 2026 को, अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट होगा वो मिनिमम 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 36 ईयर्स का, 36 का मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 36 साल। इसी के साथ साथ एक क्राइटेरिया और लगाया हुआ है मिनिस्ट्री ने, ये कैटेगरी ए के लिए है जिसमें हमने कहा था SC और OBC का है। जो कैटेगरी बी थी जिसमें सभी सीटें खाली थी, उसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, उसमें साथी लोग आ सकते हैं बिना इन लिमिटेशंस के। तो जो इनकम क्राइटेरिया है कैटेगरी ए के लिए यानी SC और OBC के कैंडिडेट्स के लिए, उसमें है कि परिवार की इनकम जो है सालाना 8 लाख से कम हो, तो और इसके लिए बकायदा रेवेन्यू ऑफिसर का हमें इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अभी ना हो तो बच्चे बाद में भी अंडरटेकिंग करके दे सकते हैं।
1: जी सो बहुत अच्छी जानकारी तुसी दित्ती है प्रोफेसर साहब, इस वैबसाइट ते तां असीं जावांगे ही जावांगे, जेकर
0: जी
1: कोई फोन नंबर जां कोई हेल्पलाइन नंबर होर लैंडलाइन नंबर सांझा कर सक

0: फिलहाल तो इस पे फोन नंबर मेरा ही जो है अपडेटेड है, और मेरी गुजारिश बस यही रहेगी साथियों से कि जो भी फोन करें तो कृपया करके थोड़ा सा ऑफिशियल टाइम जो होता है 10 से 5 बजे तक आप कॉल कर सकते
1: जी
0: हैं। उसके बाद बहुत अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट कॉल ना करें। फोन नंबर आप नोट कर लें, 8800499177।
1: जी। सो बड़ी बेहतर जानकारी देने लिए तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर विनोद आर्य जी।
0: जी शुक्रिया, शुक्रिया मनदीप जी, एंड शुक्रिया युववाणी प्रोग्राम का भी। और हमारी गुजारिश और भी लोगों से है कि जहाँ पर भी आपकी जानकारी में इस तरीके के स्टूडेंट हों जो एलिजिबल हों, ये जानकारी जरूर फैलाएं ताकि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसका बेहतरीन लाभ स्टूडेंट्स ले सकें। खासतौर पर मेरी गुजारिश है सभी से, साथियों से, कि जो हमारी विमुक्त जातियों के कैंडिडेट्स हैं, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आप उन तक ये बात पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 सीटें हैं, हमें कम से कम 50 स्टूडेंट चाहिए तभी हम ये बैच रन कर सकेंगे जो DNT वाला है। और बाकी ए और बी कैटेगरी में, जो हमने बताया था, बी कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो बस बाकी डिटेल्स देख लें एलिजिबिलिटी की, जो हमने एक बार बता दी थी। ए कैटेगरी में SC और OBC का है, और इनको सरकार की तरफ से ए कैटेगरी को जो भी मुआवजा है या स्टाइपेंड है वो मिलता है, वजीफा सॉरी, मुआवजा नहीं, ये मिलेगा। और सी कैटेगरी के लिए फिर से हम गुजारिश करते हैं कि जहां पर भी आप ये खबर पहुंचा सकें जरूर पहुंचाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोगों को दे पाए।
1: शुक्रिया।
2: उम्मीद है कि थोनू ये जानकारी मददगार रही होवेगी। ता आओ गल करदे हां एक अजिहे महान कलाकार बारे जिन्हां नूं शब्दां दा जादूगर भी कहा जांदा है। 3 अगस्त दे खास मौके असी याद कर रहे हां उर्दू शायरी अते हिंदी फिल्मी गीतां दे उस महान शायर नूं जिस दे लिखे शब्द अज भी हर दिल नूं छू जांदे हन। असी गल कर रहे हां शकील बदायूनी साहिब दी। शकील बदायूनी साहिब दा जन्म 3 अगस्त 1916 नूं उत्तर प्रदेश दे शहर बदायूं विच होया। बचपन तो ही उन्हां नूं उर्दू, अरबी अते हिंदी भाषावां नाल प्यार सी। अगे चल के उन्हां ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तों सिक्ख्या प्राप्त कीती अते मुशायरियां विच अपनी शायरी नाल वक्खरी पहचान बनाई। साल 1944 विच ओ मुंबई पहुंचे अते संगीतकार नौशाद नाल उन्हां दी जोड़ी बनी। ए जोड़ी भारत दीआं सब तों सफल जोड़ियां विचों इक मन्नी जांदी है। उन्हां ने बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम अते मेरे महबूब वर्गियां क्लासिक फिल्मां लई अमर गीत लिखे। उन्हां द्वारा लिखे बहुत सारे गीत हजे भी लोकां दे दिलां विच वसदे हन, जिवें कि चौधवी का चांद हो, जब प्यार किया तो डरना क्या वर्गे अनेकां ही गीतां नूं बहुत प्यार मिलता रहा है। शकील बदायूनी ने अपने करियर दौरान लगभग 99 फिल्मां लई गीत लिखे। उन्हां दीआं लिखतां नूं 3 साल लगातार फिल्म फेयर बेस्ट लिरिक्स अवार्ड नाल सन्मानित किया गया। ए उन्हां दी लोकप्रियता अते काबिलियत दा सबूत है। उन्हां दीआं गज़लां भी बहुत मशहूर हन। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੇ ਅੰਜਾਮ ਪੇ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਬੇਗਮ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਬਦਾਯੂਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1: ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਰਤਿਆਂਗਨਾ ਯਾਮਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਮਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਅਤੇ ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਿਰਤਿਆਂਗਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ।
2: ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਯਾਮਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਮਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਅਤੇ ਕੁਚੀਪੁੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨ੍ਰਿਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਯਾਮਿਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਦਸੰਬਰ 1940 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਨ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ

0: नमस्कार श्रोतियो, प्रोग्राम शाम सुहानी दा आगाज़ करन लगे हाँ। मैं जसविंदर कौर
1: ती मैं राजपाल कौर।
0: राजपाल, मैनू लगदा श्रोतियां नू पता ही है कि शाम सुहानी विच शामिल होण लई उन्हां ने की करना है। हाँ जी, तुसी बिल्कुल सही पहचानिया, तुसी डायल करना है
1: 0164-2240-331।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही राजपाल, दसनी है अपनी पसंद दी आवाज़ ते असी सुनावांगे तुहानू आवाज़ दे सुरां च परोया गीत। फिर देर किस गल दी है? गल तुसी मिलाओ फोन, जदों तक तुहाडी कॉल साढ़े तक पहुंचदी है असी सुनदे हाँ एक प्यारा जिहा गीत।

0: वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भूलना, मिति 4 अगस्त दिन मंगलवार शाम 5:30 बजे श्रीमद भागवत गीता यथार्थ रूप सनातन सच दी खोज प्रोग्राम हर अकाल उस्तद दे तहत।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। लोक सभा ने सर्वोच्च अदालत जजां दी गिनती सोध बिल 2026 ते राज सभा ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास सोध बिल 2026 पास कीता। सर्वोच्च अदालत ने कहा दिल्ली ते होर राज सरकारां विद्यार्थियों वालों नीट पेपर लीक मामले विच दर्ज FIRs नूं वापस लैण जां बंद करन दी प्रक्रिया अपना सकदियां ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा प्रणाली नूं मजबूत करन लई विभागां दरमियान वधेरे तालमेल दी लोड़ ते जोर दिता। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं 8 लाख तों वध कर्मचारियों ते पेंशनां दे महंगाई भत्ते दा बकाया 15 दिनां दे अंदर अंदर अदा करन दे निर्देश दिते ते भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 विच माल ढोआ ढुआई च 9% दा वाधा दर्ज कीता। ते हुण खबरां विस्थार नाल। लोक सभा ने सर्वोच्च अदालत जजां दी गिनती सोध बिल 2026 पास कर दिता है। इस बिल का उद्देश्य सर्वोच्च अदालत जजां दी गिनती एक्ट 1956 च सोध करके सर्वोच्च अदालत दे जजां दी गिनती 33 तों वधा के 37 करना है। यह गिनती चीफ जस्टिस तों इलावा है। इस साल मई विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च अदालत दे जजां दी गिनती 33 तों वधा के 37 करन लई एक ऑर्डिनेंस जारी किया सी। लोक सभा की कार्रवाई दूजी बार मुलतवी होने तों बाद जदों मुड़ शुरू हुई तां केंद्रीय कानून ते न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च अदालत जजां दी गिनती सोध बिल 2026 पेश किया। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ सुधार प्रदर्शन ते तब्दीली दे मंत्र नूं प्रभावशाली ढंग नाल लागू किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि यह बिल न्याय खेत्र च चल रही सुधार प्रक्रिया विच इक महत्वपूर्ण कदम है।

0: के विवेक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: बिल पास होने तो बाद लोकसभा की कार्रवाई सवेरे 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। उधर राज्यसभा ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास शोध बिल 2026 भी पास कर दिता है। इस बिल का उद्देश सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास एक्ट 2006 विच सोध करना है। इसका उद्देश अदायगी देरी नूं दूर करना ते विवाद निपटारे नूं सरल बनाउणा है। बिल विच व्यवस्था है कि हरेक केंद्रीय जनतक खेत्र दे उद्यम नूं छोटे ते दरमियाने उद्यमां तों वस्तां ते सेवावां दी खरीद लई सारे बिलां दा निपटारा व्यापार प्राप्ति योग छोट प्रणाली राहीं करना होगा। बिल विच इह व्यवस्था भी कीती गई है कि जेकर कोई मामला 6 महीनियां तों वध समय तों बकाया पै तां सप्लायर नूं निर्धारित रकम दा घट्टो घट 50% अदायगी कीती जानी चाहीदी है। पहली बार मुलतवी होने तों बाद जदों सदन की कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तां सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां बारे मंत्री जतन राम मांझी ने यह बिल पेश किया। बिल पास होने तों बाद राज्यसभा की कार्रवाई सवेरे 11 बजे तक लई मुलतवी कर दिती गई। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधी धिर के महत्वपूर्ण बिलों उत्ते चर्चा में हिस्सा न लैण का इल्जाम लगाया। संसद के बाहर पत्रकारों नाल गलबात करदिआं श्री रिजिजू ने कहा कि सर्वोच्च अदालत जजां की गिनती सोध बिल 2026 अज लोकसभा विच पास हो गया। विरोधी पार्टियां दा कोई भी मैंबर चर्चा विच शामिल नहीं होया। उन्हां कहा कि इसे तरह राज्यसभा ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास सोध बिल 2026 भी पास कर दिता है। विरोधी धिर ने इस विच हिस्सा नहीं लिया। उन्हां कहा कि संसद दे बाहर विरोधी धिर ने मैंबरां ने कहा है कि उन्हां नूं सदन च बोलण की इजाजत नहीं दिती जा रही। जदों उन्हां नूं मौका दिता जांदा है तो बोलना नहीं चाहते। इस दौरान कांग्रेस प्रधान ते राज्यसभा च विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले नूं लैके जंतर मंतर ते प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई बारे सदन च सरकार तो बयान की मांग की। संसद के बाहर पत्रकारों नाल गलबात करदिआं श्री खड़गे ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह नूं संसद विच इस मुद्दे ते बयान देना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि दिल्ली अते होर राज सरकारां विद्यार्थियों वालों नीट पेपर लीक मामले नूं लैके कीते गए विरोध प्रदर्शनों दौरान पुलिस कार्रवाई नाल संबंधित मामलों विच दर्ज FIRs नूं वापस लैण जां फिर बंद करन दी प्रक्रिया अपना सकदियां ने। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगवाई वाले 3 मैंबरी बैंच ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के निर्देश विच गंभीर अपराधों च शामिल मुलजमां खिलाफ ही कार्रवाई की गल कही गई सी। केंद्र सरकार वालों पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि विद्यार्थियों खिलाफ मामलों नूं वापस सरकार का इरादा बरकरार है पर कानूनी प्रक्रिया तहत FIRs नूं बंद करने लई ढुकवें कदम चुकने होंगे। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अदालत पैलेट गन की वरतों संबंधी दिशा निर्देश तय करने ते विचार कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त नूं होगी। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRANU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा प्रणाली नूं मजबूत करन लई रक्षा मंत्रालय दे फौजी ते नागरिक विभागां दरमियान वधेरे तालमेल दी लोड़ ते जोर दित्ता है। राजनाथ सिंह ने अज नवी दिल्ली च 85वें हथियारबंद सेना हैडक्वार्टर नागरिक सेवावां दिवस समारोह नूं संबोधन करदिआं कहा कि इस नाल सुरक्षा ते तकनीकी चुनौतियां दा प्रभावशाली ढंग नाल हल होएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी ते सिविल सेवावां दोवें ही राष्ट्र पहलां लई बरकरार वचनबद्ध ने।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुँचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव,

0: डॉली बेबी पूजा तामुरिया पुष्कर लिहान जिज्ञासा विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं।
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
1: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
1: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्सो, लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माता जी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।

0: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
1: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
0: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
1: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
3: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे
1: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
0: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
1: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
0: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
1: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
0: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।

0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
1: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
2: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
2: ९ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
2: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

0: विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
2: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
3: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था।

0: कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
2: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
3: खुफिया ब्यूरो की एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनयिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जाँच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और

0: Young cyclist Harshita Jhakhar rode into history books by becoming the first Indian woman to be a part of the Tour de France Femmes in Switzerland. The 19-year-old led a pack of eight talented cyclists from Afghanistan, Algeria, Chile, Ethiopia, with two riders, Namibia and Uganda, during the ceremonial start at stage two of the Grueling race yesterday. The event started on 1st of this month in Lausanne and will end on the 9th August in Nice. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on cyber fraud and cyber security, safeguarding the digital citizen. During the program, listeners can ask questions on telephone numbers 011-2371-7117, 011-2371-7106. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Vadodara, Gujarat. Congress keeps Dathia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. That is all in the news at 9. Good night.
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। 9:15 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9:15 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ, 9:30 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਇਆ ਗੀਤ, 10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ ਕੇ ਫਨਕਾਰ ਅਤੇ 10:30 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਢਲਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ।
2: अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
3: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं जयदेव। फिल्म का नाम है लैला मजनू।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है श्री 420।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: जिसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर AR कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुका।

0: गे।
1: यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं। बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

21 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में। पूछती हैं मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या। ये जो सुन रहे हो तुम इतनी गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या।
1: तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है, फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे, कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलट कर किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नजर अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे मायूस करने का। मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपनी किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी ना।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: लेट्स स्टार्ट द फन।
1: 3 अक्टूबर 1957 वो सुनहरा दिन जब शुरू हुआ था सुरों और शब्दों का सुनहरा कारवां। 3 अक्टूबर हम मना रहे हैं विविध भारती की सालगिरह। हवा महल की सुनहरी कहानियाँ, छाया गीत में सजे नरमो नाजुक गीत, सुरों की सरिता, संगीत सरिता, सखी सहेली, दिलों को छूती विविध आवाजें,
2: साज हो तुम आवाज़ों।
1: किसी के लिए विविध भारती यादों का खजाना, किसी के लिए दोस्ती की पहचान, किसी के लिए है विविध भारती परिवार के सदस्य। तो बताइए आपके लिए क्या है विविध भारती? विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपके हमसफर बने? विविध भारती ने आपको क्या सिखाया? विविध भारती से आप कब और कैसे जुड़े? बताइए हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग में। सखियां बताएं अपने दिल की बात, साझा करें विविध भारती से जुड़ी सुनहरी यादें। रिकॉर्डिंग मंगलवार दिन में 11 बजे से। टेलीफोन नंबर 400-24662, STD कोड 022। प्रसारण 3 अक्टूबर दिन में 3 बजे।

0: बीतती जाए रात।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी विविध भारती सेवा दे प्रसारण FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साढ़े स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो रहा जी 11:17। इस दे नाल ही साड़ी अज दी प्रसारण सभा इत्थे ही समाप्त हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते कल दी प्रसारण सभा दे प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ आग्या, जय हिंद।